और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा आम
1: अरे जाम। तो ये बात है दोस्तों, तो कहते हैं यारो प्यार करना जो है वो सिर्फ नसीब वालों को मिलते ही कि ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल कर आता है जो जिसको नसीब में होता है।

और आपकी आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ सीन है, फिल्म के नाम है ये वादा। ये वादा रहा, कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बहाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई? कभी कभी नजर तो खफा हो जाते हैं कि मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। ना रूठो ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे। ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे, दिल के दुनिया तबाह कर जाएंगे। प्यार किया है हमने, कोई मजाक नहीं किया है, दिल के धड़कन तेरे नाम कर दी।

और जरा फिर से, और जरा फिर से कहना, और क्या कहना है हमारे यारो, आपको क्या कहना है, सोच मिलने चाहिए, दिल तो अपने आप ही मिल जाते हैं, तो शक ना कर मेरी जज्बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की, मरते इंसान के लिए बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

और क्या आप भी कभी भूला है और कभी याद किया है, लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठी, तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह, हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में क्या है,

0: और दोस्तों ये सब गीतों का महान प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं। है ये गीत जो है आपको जरूर सुनना चाहिए।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच।

और व्हाट इज योर मोबाइल नंबर सोनी निगम का यानी का ये गीत है हसीना मान जाएंगी, हसीना मान जाएंगी कि बिन आपके कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ पल के जुदाई भी सही नहीं जाती, तुम खुद ही समझ लो और तुम खुद ही समझ लो और प्यार की लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं जाती, लिख कर ये बात मुझे कहीं नहीं।

और लेके पहला पहला प्यार, और कौन के ये पहला पहला प्यार है हमारे यारो। और उसके बाद अभी हम और आगे अपना प्रोग्राम को आप की सुनाएंगे। तो यहाँ से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं, और ये है फॉर ऑल द लवर्स, कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वारे दोस्तों की तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है, और बॉम्बई का बाबू 96.0 का मूवी है, और क्लासिक सॉन्ग है। और इफ बॉम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

और देखा मैंने भोला है। और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू, और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई है निगाहें, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें, और देखी हुई किसी को जबाना गुजर गया है, देखी हुई किसी को जमाना गुजर गया है, और जो किसी को देखे हुए जमाना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जो अगर दिल के अरमान जो है वो जो टूट जाते हैं तो आंसू बनकर, आंसू बनकर आंखें में झलक जाती है।

0: और दिल के अरमां आंसू में और वो रह गए और कहते हैं ये कही कही के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कही कही के ये हम कही कही के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कही कही के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारो, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जब कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम आपको बताते हैं।
1: अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो,
0: सोचो कभी ऐसा हो तो भला क्या होगा,
1: कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
0: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन
1: और हम तुम, हम तुम जब अपने कमरे में बंद होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एथर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेंगे नीदरलैंड के बातचीत होते हैं ना सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 5.7 फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्रेस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते है, नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारों तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर

बहार का हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। दोस्तों मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर और मूवी के नाम है चोरी और चोरी। चोरी चोरी में क्या होता है और दादा दादा नहीं परमा श्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

और आजा आजा सनम मधुर चांदनी में हम, और जब तुम मिलेगी तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। ये किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरे भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और मैं थी मुकेश, नाइटी गिल लता मंगेशकर या जोंग आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में कुमार यानी कि जीन तमन मनोज कुमार ने काम किए हैं, और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आपको, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब आप हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आपको कैसे भूलेगा। हमारी यारों की यारों की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आपकी अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती ससन फैक्ट के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और गोरी बुलाए तेरा सावरिया, मनाए तेरा सावरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैति गे लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंड तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर जोकर, तो आओ मिलकर सुना जाए।

और जाने कहां गए वो दिन। फिल्म के नाम है मेरा नाम जोकर, नहीं करने वालों से ही पता का ये फिल्म है दोस्तों। माइटी मुकेश का ये लवली प्यार भरी सॉन्ग है।

मित्रों, आज जो बतलाने जा रहा हूँ उसे आज भी सुनना और जीवन में जरूर उतारिए। इसलिए तो हम बार बार ये बतलाते हैं ना, हम भी सुनते हैं, हम भी अपने जीवन में उतारते हैं मित्रों। तो ज्ञानी व्यक्ति, ध्यान करना, ज्ञानी व्यक्ति न

श्रोता शोक किस बात की। अच्छा ही इंसान के नाते रोना पीटना हो जाता है। केवल ज्ञानी ही मित्रों, केवल ज्ञानी ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है मित्रों। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, धैर्य और साहस मित्रों, यही तीन चीजों से प्राप्त होता है।

दोस्तों, ईश्वर से सर्व संबंध अनुभव करने का अर्थ है कि आप सभी इच्छाओं से पार जा चुके हैं।

मित्रों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि ध्यान करना मित्रों, हम का बोलते हैं अपने देश में, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। किससे? अपने कर्मों से महान बनता है, जैसे आप, और ना जैसे बगल वाले घूसखोरी देकर डिग्री ले लेते हैं वगैरह, बोले हम महान हो गए। खबरदार, पास हो गए मित्रों। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं। शायद इसका अनुभव है आपको, है जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे। अमान निमानी लूर खदराज है मित्रों। तो धर्म, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, जरूर होगा। और धर्म का नहीं मित्र, गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, दिसना अतोरी, साथ कितना देता है और कहाँ तक मित्रों, ये मायने रखता है और ना कुछ और है। दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए आगे सुनिए भजन को।

दे। मित्रों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरा में चमकती है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। को आप भी कोसते हो ना? नहीं तो ठीक है। तो मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है हमेशा ही, तो ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका कर्म आपके हाथ में है मित्रों, और ना किसी और के हाथ में है।

मित्रों, जीवन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बनाने के लिए हम खुद हैं। खुद ही हम जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। और जब बिगड़ जाता है तो हम उंगलियां दिखाते हैं किसी और के, वो करे कारण भैले, वो कराई से, वो एक न कराई से, तू अपने कर लो। मित्रों, खबरदार, उंगली मत दिखाया करो। सत्य से कमाया धन, मित्रों, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरा नहीं होते तो रास्ता बदलिए, अपने रास्ता को बदलिए, अपने तरीका को बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, पेड़ भी बदलते रहते हैं अपने पत्तों को। जरिया थोड़ो बदले है तो तू कहे कि अपना जरिया, अपने तरीका को बदल दो जीने के। उस साइड ठीक नहीं होगा ना, तो उसे बदलो, बदलो मित्रों।

दोस्तों, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, ध्यान करना, किसी के संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना मित्रों कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप तो नहीं, आप सीखते नहीं, आप तो जलन करते हो। ऐसे बात नहीं है तो बहुत अच्छी है, तो देखकर उनको विशेषताओं को सीखो, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करो, जलन मत करो, क्योंकि जलन में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा।

दोस्तों, विश्वास के बगैर, विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। ध्यान करना, आप अपने बाल बच्चों को अब खुद समझे। विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता हो ज्यादा देर तक कायम यानी टिक नहीं सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता मित्रों, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। और जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। और जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे आप मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं तिक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ जुड़ गए हूं। मेरा नाम संजय है।

सभी जो बीमार है पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि भगवान शक्ति दे और स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है और जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने नौकरी के ओर के लिए तो उनको ये कहना चाहूँगा कि ये मत भूलना जो महात्मा गांधी जी ने हमें सुनाए थे कि ये मत समझ कि हमारा जो देश है वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये सिद्धांत जो छोटा शब्दों में महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ जो इस समय तैयार कर रहे स्कूल जाने के लिए तो उनसे कहूंगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं क्योंकि वही बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले हैं। जो अभी सफर पे निकलने वाले हैं तो जरूर ये कहना चाहूंगा कि सफर के लिए समय पे उपस्थित हो जाना। जो हमारे देश में सफर से आए हैं उनको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और ये कहना चाहूंगा कि देशों में एक देश ऐसा है हॉलैंड जिसे हम स्वर्ग को भी कह सकते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है और यहाँ कहा जाता है कि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन की सच्ची संपत्ति कहलाते हैं। एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम कुछ थोड़ा से हंसते रहे। क्योंकि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन का सच्ची संपत्ति कहलाए है।

0: कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे हैं।
0: चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ।
2: आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ।

0: जी देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।
2: हंसराज रघुवंशी जी की आवाज में खाटू श्याम के सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं। शुभ प्रभात कहा जाता है। और ये कहना चाहूंगा कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं।

fijne dag toegewenst. और इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि लेखक जो लिखते हैं बड़ा सोच समझ के संदेश रखते हैं कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं।

मैंने मेहंदी सजाए रहे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाए रहे कृष्ण नाम की, मेरी चुनरियों में कृष्ण, मैंने नथनी सजाई रहे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैं ज्योति जलाई रहे कृष्ण नाम की, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंग है उसी के रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रहे कृष्ण नाम की।

पना बना ले हो मेरे श्याम, ये सुंदर सा भजन जो खाटू श्याम जी के अंतर्गत हम सब रखे। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। कहा जाता है जब अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो।

लेखक ने अच्छा ही लिखा है कि जब अकेला हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो।

कहते हैं कि बीते हुए कल कभी वापस नहीं आता है, पर बीते हुए कल में लोगों का वर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है।

कैसा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मिले हुए हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ।

आप चुन हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से। सवेर हो चुका, सूर्य का किरण धीरे धीरे निकलने वाले हैं। सुनो वालों, इस बात को भी हम ध्यान देते हैं कि हमारे जगत गुरु ने क्या कहे हैं कि 6 महीने रात जल्दी सो जाओ और सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर और देखो, यदि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ना आए तो मेरे खिलाफ मुकदमा चला देना। ये हमारे जगत गुरु का संदेश है कि सुबह और सूर्य उदय से पहले उठ करके सूर्य अर्घ को अर्पण करो तो 6 महीना के अंदर अंदर में आपको और उसमें आपके जीवन में तरक्की होते हैं।

सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और मैं आपके साथ जुड़ा हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ। मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे कुछ समय तक।

लगता है कि बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाला भी सौभाग्य से मिलते हैं। क्या आज किसी को आप याद और करेंगे या करने वाले हैं? और जैसे कि हर बार की तरह हम अपने दोस्तों का याद में भी रहते हैं, या हम अपने परिवार को याद करते हैं,

मंगेशकर के आवाज़ में हम सब ये सुंदर सा गीत को सुने। फिल्म जो लव स्टोरी से निकाला गया 1981 और जिसमें काम किए कुमार गौरव और विजयता पंडित जी ने। कहने के तात्पर्य ये है कि कोई के याद आ रहे हैं, किसी का याद आ रहे हैं, तो हमारे पास तो अब व्हाट्सएप भी है, हमारे पास अब टेलीफोन भी है और बाकी के आप खुद समझदार हैं। हम अगला फिल्म का गीत जो आपके लिए रखने वाले हैं

का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुनने वालों, एक फिल्म है जो आज कुछ 30 साल से लगातार भारत बॉम्बई मराठा मंदिर में जो 11 AM पे चलाया जाता है, अभी तक रोज हफ्ता में 7 दिन द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो दोस्तों, ये फिल्म को देखने के लिए दुनिया के हर एक प्रांतों से जा करके और बॉम्बे शहर में और देखते हैं लोग। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अगर ये फिल्म देखने का इच्छा है तो ज़रूर बॉम्बे जाइए और वहाँ पर ये फिल्म का कुछ 30 साल से चल रहा है, वहाँ का मज़ा कुछ और है। हम याद करते हैं अपने दोस्तों के और अपने संबंधियों के, कोई किसी को भी याद करते हैं। उस अंतर्गत में कुछ सुंदर सुंदर सा गीत और हम रखने वाले हैं आपके साथ।

दिल और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं। दिल और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल और फूल से भी खूबसूरत होते हैं। और वो कौन है? वो कौन है? कहे जाते हैं कि वो है आप।

सुनो लो आज के गीतों से जरूर किसी किसी को याद और आते होंगे। और आज जो सुंदर सुंदर गीतों से हम आपके साथ जुड़े हैं, अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गया वही अच्छे दिन थे। दोस्तों इस बात पे ध्यान देते हुए हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने। और यह जो कहा जाता है कि खुद को एक सोने के सिक्के के जैसा बनाइए, जो कि अगर नली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। हम एक और भी सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के ओर से।

मोहब्बती फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, जिसमें काम किए हैं शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जी।

यहाँ तक था मेरा हिस्सा का कार्यक्रम। आशा ये रखता हूँ कि कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जो जुड़े रहे आपके साथ, आपके जरूर अच्छा लगे होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और ये जरूर कहना चाहूँगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

वीडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर स्वागत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम शेष दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर ट्यून करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हमें कहो सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

माया मिला के और अखिया बहुत सुंदर गीत। यादे यादे यादे ताज़ा करा देते हैं ये गीत, और ये गीत आपके लिए पेश हो रहा है। नदिया के पार से निकाल दिया गया है, और नदिया के पार या पुराना नदिया के पार है फिल्म, पुराना नदिया के पार से, और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है नेकंतीन अख्तन फेर तख में। अब पता ना है कि उन समय के अभी व्यक्ति है, निवासियों है कि नहीं, फिर भी जो उन दोनों में उन दिनों में ये गाना सुनकर और बड़े हुए हैं, उनका याद जो है ताज़ा हो जाता है। वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ कि वक्त हमेशा आगे बढ़ते हैं, रुकने का नाम इसमें नहीं है, रुके तो बस खराब और अधूरे रह जाते हैं।

हाँ, वक्त हर रिश्ते की सच्चाई दिखा देते हैं मेरे दोस्त, कौन अपना है और कौन पराया है वो भी बता देते हैं, और वो क्या है, वक्त। इस बारे दिल के भागा, दगा दे के भागा।

दिल लेके भागा, दगा दे के भागा, ऐसे बेदर्दी ने कैसे और फरमा दिया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हर वक्त हर पल आपको शुभकामनाएं पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मुश्किल दौर की यही एक सच्चाई होती है मेरे दोस्त, और वो क्या होता है हम आपसे ये बता दें कि मुश्किल दौर की यही एक सच्चाई होती है।

हमसे मोहब्बत, हमसे होती मोहब्बत तुमको, प्यार जरूर से, आप जरूर से प्यार सीख जाते। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, आपने ठीक सुना कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती मेरे दोस्त वक्त बदलने के लिए।

फिल्म अनारी से ये सुंदर सा गीत आपके लिए। और ये फिल्म, इस फिल्म में स्टार कास्ट है राज कपूर, नूतन जी और मोतीलाल। हाँ, गीत को गाई है लता जी और शुरुआत में आप सुने मुकेश जी की आवाज। यहाँ से लेकर चलते हैं उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मन में हमेशा जीत की आशा होती है। हाँ, मन में हमेशा जीत की आशा होनी चाहिए, होती है और होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले, वक्त, हाँ, फिर वही वक्त जो है वो अक्सर बदलता है।

मुकेश साहब जी की आवाज में एक वो भी दिवाली फिल्म नजराना से आपके लिए निकाल दिया गया। इसमें राज कपूर और विजयंती माला स्टार कास्ट हैं। दुख की बात ये है मेरे दोस्त कि हम ये सोचते हैं कि बहुत वक्त है। दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है। खुशी की बात यह है कि अभी वक्त है।

जब आई मुसीबत तो कोई भी साथ ना था, नज़र उठा के देखा तो सिर पे मेरे सतगुरु तेरा हाथ था। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

Oh, namaste, Pongche. आप सभी लोग को मेरा नमस्कार पहुँचे, बड़ों को सबको पाई लगी, छोटों को मेरा राम राम और खुये नाफन।

0: अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया था, कवच, कुंडल, सोना, चांदी, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में भूखे क्यों रह गए? क्योंकि एक ऋण था जो उन्होंने कभी नहीं चुकाया था, और वो ऋण आपके ऊपर भी हो सकता है। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनके सामने अमृत और भोजन नहीं बल्कि सोना और हीरे थे। भूख से तड़पते कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा,
1: मैंने अपना पूरा जीवन दान में लगा दिया, कवच, कुंडल, सोना, चांदी सब दे दिया ताकि कोई भूखा ना रहे, और आज मैं स्वयं स्वर्ग में भूख से तड़प रहा हूँ। ये कैसा न्याय है देवराज?
0: देवराज इंद्र ने कहा,
1: अंगराज, ये सच है कि तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन हर मनुष्य तीन ऋण के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहले दो तुमने चुका दिए, लेकिन तीसरा यानी पितृ ऋण खाली है। तुमने अपने पितरों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया, एक बार भी उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा।
0: लेकिन कर्ण का उत्तर भी उतना ही सच था। उन्होंने कहा,
1: मैं श्राद्ध कैसे करता? मैं तो सूत पुत्र बनकर जिया, मेरे माता पिता तो राधा और अधीरथ थे। मेरे वास्तविक वंश का ज्ञान मुझे मृत्यु से कुछ क्षण पहले हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं।
0: इंद्र ने कहा,
1: उचित कहा तुमने कर्ण, लेकिन तुम्हारे पितर आज भी तुमसे अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तुम्हें भी तृप्ति नहीं मिल सकती।
0: कर्ण ने अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। इंद्र ने कहा,
1: ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। जाओ अपने सभी पितरों को तृप्त करो और पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ।
0: पृथ्वी पर आकर कर्ण ने सबसे पहले अपने पिता सूर्य देव को अर्घ दिया, फिर अपनी जन्मदात्री कुंती और पालक राधा और अधिरथ का तर्पण करते हुए कहा,
1: आप सभी तृप्त हो और मेरे वे सभी पूर्वज जिन्हें मैं जानता हूँ या कभी जान ही ना पाया, आज आपका पुत्र कर्ण आपको अन्न और जल अर्पित करता है, इसे स्वीकार करें और मुझे इस ऋण से मुक्त करें।
0: इन 15 दिनों में कर्ण ने हजारों भूखों को भोजन कराया, हर एक दाना अपने पितरों को याद करके अर्पित किया। स्वर्ग लौटने पर कर्ण के सामने सोने चांदी की जगह भोजन परोसा गया, और उसी क्षण

0: उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन असल में ये भूख अन्न की नहीं थी, ये भूख कर्तव्य की थी। कर्ण को दिए गए वो 15 दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। वही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। हर साल ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं। और श्राद्ध केवल एक पूजा नहीं है, ये अपनी जड़ों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो आप इस पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं?
1: अब यही बात तो सबसे मूल्य है कि आप अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में क्या करते हैं। तो सुनने वालों, आज हमारे साथ हमारे सहयोग दे रहे श्रीमती शीला जी, और शीला जी जो हमारे सीनियर के और अनेकों स्थानों पे कितना काम करते हैं। तो शीला जी, आपको हार्दिक से स्वागत एक बार फिर। और आप जो हमारे सीनियर तनी बचाए के बोलक पर है ना, बुढ़ पुरनिया बोलिए पुराना भाषा में, तो अपना चली,
2: अपना चली।
1: हाँ, डांट दे शांता जी,
3: कहाँ सीखे क्या है?
1: पर हमारे जो औदर है ना,
2: औदर है,
1: तो औदर के लिए आप बहुत कुछ करते हैं हॉलैंड में। और उस अंतर्गत में आप ऐसा क्या है जो, क्योंकि ये बात कहे जाते हैं ना, आपके मुख से मैंने सुना है पर हम औरों के मुख से सुने हैं कि शीला जी जब पेंशन से चल जाए तो क्या होगा। जैसे इवेंट हेल भी सुंदर इवेंट सो एक्टिव बेसिक मैथ ऑन से औदरन, ऐसे कहने के तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने अभी हाल ही में एक जगह गए जहां पर हिंदुस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और शांता जी भी वहां आए थे, जॉनी भाई भी वहां थे, और हम सभी कुछ न कुछ करते हैं। कभी शांता जी जो और गीतों का और लेस देते हैं, तो कहीं जॉनी जी जो और नाटक को लिखते हैं और प्रेजेंटेट करते, तो हम लोग उनका जान पहचान वाले ढेर सारे हैं। पर कहने के तात्पर्य ये है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ जाते हैं जहाँ औदरन रहते हैं, दख फॉर लाइफ आदि। तो उस अंतर्गत में आपके हम लोग को कुछ सुनाइए।
2: वहाँ जो आते हैं ना, वो अपने जो साथ है सभी लोग अपने लेफ्टाइट के लेफ्टाइट्स खनोते हैं सभी लोग ना, जो घर पर रहते हैं और सेल्फस्टैंडिंग रहते हैं, आते वहाँ पर अपना दिन बिता करके दाह उपफंग में दाह एक्टिविटी करके अपना घर फिर चला जाता है सभी लोग। उन लोग के बहुत ज़रूरी है कि घर पर वो खाना ना पका सकते हैं, वहाँ सब घर पर अकेला भी ना रह सकते हैं दिन भर, इसलिए वहाँ पर आते हैं सभी लोग कि आ करके अपना जितना हम लोग के वहाँ एक्टिविटी तो बा, हम लोगन एक्टिविटी तो करेला सबके साथ हो करके वहाँ, तब सब कोई शाम को घर पर चला जाता है। वहाँ उन लोग के दिन ऐसे बहल जाता है।
1: कहने के तात्पर्य यह है कि हम जब हमारा पेंशन हो गया, हमें बुढ़ापा भी थोड़ा आ गया, फिर भी कहना नहीं चाहता हूँ शांता जी, पर कह देता हूँ, पर हम लोग के लिए दख बस्तेदिंग हॉलैंड में ये सब चीज़ बनाया गया है। और ये दख बस्तेदिंग जो है, देखो अनेकों अनेकों शहरों में होते हैं, हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं चौताल सुनाने को, तो कहीं जाते हैं रामलीला खेलने को, और सब जगह हम लोग देखते हैं कि हाँ सभी जगह ये सब चीज़ें होते। पर इवेंट इन फंड मौत और फंडित जो आजकल ऐसे हम लोग के, हम लोग सौभाग्य कि आप ऐसा चीज़ बना रहे हम लोग के लिए, और हेल भी सुंदर दातु दूत। शांता जी, इस पर आप क्या, क्योंकि आप भी कभी काल के कभी योगा तो कभी संगलेस इधर उधर औदर के साथ बेसी रहते हैं, उस पे आपके क्या ख्याल?
3: आपने एक शब्द इस्तेमाल की है, बुढ़ापा और गरीबी। बुढ़ापा मेरे अनुभव से बुढ़ापा और गरीबी लोग, मैं कहती हूँ उसको कहते हैं जो आप, जब आप क्या, आप जो मोबाइल नहीं रहोगे तो आप बूढ़ा हैगा और गरीब है। जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं, जब तक चाहे 80 साल को हो या 90 साल को या 100 साल को हो, जब तक आप अपने आप में कुछ कर सकते हो तो आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, आप बूढ़ा ना है और आप गरीब ना है। ऐसे हम देखे तो उमेर जा हैगा जहाँ पे हमारा शिला जी या हमारे शिला जी वहाँ पर सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे बुजुर्ग जो आते हैं वहाँ पे भी ढेर है जो मोबाइल है।
2: सही बात।
3: हाँ मोबाइल है पर घर पे अकेले रहने के कारण और इंसान है के कारण
2: अकेलापन जो है अकेलापन वो तो अपने के महसूस करता है इसलिए वहाँ आते हैं।
3: हाँ।
2: और वहाँ पर तो अपना अपने लाइफ टाइप के साथ जो खनोते हैं सबके साथ मिल के रहता है तो वो लोग बहुत कुछ बातचीत करता है अपने में
3: सब पुराना यादें जो
2: पुराना यादें सब आते हैं।
3: और आप लोग जो निमंत्रण भी देते हैं संगीत वाले लोग के तो वो भी आकर वहाँ पर संगीत के अनुसार भी जो पुराना गाना गाते हैं ना तो वो सब मैं भी देखी ना कि कितने बैठ के रोते हैं। हाँ और ऐसे है कितने तो हम देखे जो थोड़ा से कमज़ोर हो गए बोलने में तो वो उसका शब्द जो ना बोल पाए तो उसका आँख बोलते हैं। हाँ तो ऐसे ऐसे भी है देखो ना मैं कहती हूँ भी कि अपना अपना जब तक हाथ गोड़ चले ना अच्छा कार्य करो रे मेरे मालिक।
2: सही नहीं जानते मैं लोग हम लोगों कहाँ पहुँचो कोई ना।
3: हाँ जैसे आप करते हैं वहाँ पे सेवा और कौन उफांद खदरा खुद दी औद्र या एक सी एक बेनो का पार्कर हुकूम एंड इकोले खास ओ
2: samen doen we met z'n allen. Iedereen doet zijn eigen best ja. Ja, op een eigen manier. En doen we toch hamlo sab kut jaise karpaila seva aise blogan nodig jaise ba sabke jo zaruri ba sabke liye wahi hum logan dete hai.
3: Aur mere khayal se Sheila ji aapke sanskar bhi isne hai
2: ji seva karne ke liye.
3: हाँ घर से ऐसे सीख के आए तब जो कोई कहते भी ना जो आपके थैली में है वही आप दे सकते हो अगर नहीं है तो नहीं दे पाओगे तो संस्कार आप भी अपने घर से अपने आप धन्य हो आपके माता पिता भी
2: धन्यवाद है। अब वो ऊपर वाली भी देते ना जो हम लोग के बुजुर्गों हैं वो की जो सेवा करिए उन लोग के आशीर्वाद से और शक्ति मिले और ताकत मिले उन लोग के सेवा करने के लिए और हिम्मत मिले है।
3: बात सही है
2: प्रेम से करियो सब कुछ। हाँ। प्रेम के काम है ना वो अपने दिल से चाहे उनके करे के अपने दिल से कुछ करियो तो उनके फल जरूर मिले।
3: बात सही है एकदम से। बबली जी
1: भी कुछ कहने वाले
3: हैं। बबली जी एकदम से
1: बबली जी भारत में कैसे होता है ऐसा इंस्टेंसेस है ऐसा डक फॉर लाइफ आदि होते हैं या नहीं होते हैं?
4: आज से 30-40 साल पहले नहीं था अब वहाँ भी ऐसी चीज वृद्धाश्रम कहते हैं
3: वृद्धाश्रम
4: तो वहाँ पर वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम है और उसी के हिसाब से अब बच्चे भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को। जब वृद्धाश्रम नहीं थे तो कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता था सब एक मिलजुल के रहते थे और उसी के कारण ज़बरदस्ती कोई अपने माँ बाप को छोड़ा तो बेचारे रोते हैं कि भाई वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा। कई तो पैसे के लालच में पैसा ले लेते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं कई अपनी पत्नी की बात सुन के या कुछ और घरेलू होते हैं झगड़े वगैरह उससे छोड़ आते हैं वो बेचारे रोते हैं सब कुछ करते हैं। ऐसे एक दिन मैंने कपिल शर्मा कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी
3: जी
4: तो उसमें ऐसे जैसे शीला जी दीदी चलाते हैं अपना वैसे वो भी चलाते हैं वृद्धाश्रम तो औरत बता रही थी जो वहाँ काम करती है कहती बेचारे इतने रोते हैं बेचारे माँ बाप कि कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है लेकिन भारत में ऐसे नहीं है भारत में वृद्धाश्रम दूसरे तरीके से है तो वो पता नहीं उसके वृद्धाश्रम में काफ़ी लोग थे वो बता रहे थे तो करोड़पति खेलने आए ना जो खेल रहे थे वो जो पैसे जीतेंगे वो वहाँ वृद्धाश्रम में दान देंगे। हाँ जी हाँ। और कितने मैं करोड़पति में देखती हूँ कितने लोग ऐसे आते हैं जो पैसे जीतते हैं वो ऐसे वृद्धाश्रम में देते हैं कोई अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में देते हैं ऐसे। हाँ जी।
1: तो कहने के तात्पर्य ये है कि हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी जो आज है उनकर और सेवा करने का मौका मिले तो हम जीते जी उसे खूब सेवा करें ना, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
3: बिल्कुल ऐसे।
1: और बाद में एक ना एक दिन तो हम सबके जाना है, तो बाद में जब वो नहीं रहेगा तो क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और हम आज का विषय जो है पितृपक्ष, पितृपक्ष अभी अनुराधा जी कुछ सुनाने वाले हैं दिल्ली से, जो इस समय कार्यक्रम में और सुन रहे हैं और हम सबको लिए और तैयार कर रहे हैं कि कुछ सुनाने के लिए, और मास्टर जी जो उत्तराचल से हम सबको संदेश सुनाने वाला है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए कि शायद बचपन में शिला जी हम लोगों ने पितृपक्ष सुनते थे ना सूरीनाम में, और सुनते थे पर उस समय कोई कोई लोग कुछ ना कुछ करते थे और ज़्यादा तादाद में लोग थोड़ा डरते थे, डरते थे कि अरे एक बार कर देंगे तो का अब हर बार करना पड़ेगा, कैसे लड़कों करेगा, और इस प्रकार के बातें होते थे। हमें भी अभी तलक ख्याल है उसके उन बातों के। फिर भी अब देखा जाए कि जब जब आपका सत्संग में जा रहे, आप संदेश को सुन रहे हैं, उसमें और आगे बढ़ते गए, अब देखा जाए कि पितृपक्ष जो होते हैं साल में दूसरा नवरात्रि से पहले, वो और गणेश चतुर्थी मनाए लगने हैं, और होलांत में गणेश भगवान भी आ गए हैं ये चतुर्थी फेस्टिवल के अंतर्गत, क्योंकि लगभग 195 देशों है, और कहते हैं जहां हवा है और जहां पानी है वहां हिंदुस्तानी भी है, ऐसा है शांता जी की ना?
3: हाँ, एकदम। बहुत
1: तो जहां जहां हिंदुस्तानी है वहां वहां हमारे और जो त्योहारे है त्योहारे भी लेकर हम गए हैं और त्योहारों को मनाने लगा। और खास करके सबसे मूल्य है कि हमने देखा कि होलांत में जब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के अंदर, तो अब जो यहाँ भारत में जो फेस्टिवल डाउन हो जाता है तो व्हाट्सएप बरेख बन के निकल जाता है कि देखिए भाई गणेश जी का और मूर्ति किस प्रकार से फेंका हुआ है, ऐसे हर साल होता है। नवरात्रि के बाद दूसरा फिल्म बनाते, ऐसे हर साल बनाते। पर कहने के तात्पर्य ये मैं कहना चाहता हूं कि होलांत में ऐसा मूर्ति बनाया गया मिट्टी से जो जा करके जल में छोड़ने से वो बिल्कुल गल हो जाता है। तो धन्यवाद है कि हमारे बच्चों अच्छा उनसे केंद्र दीदा माँ कन। और ऐसा अब सी तो मैंने देखा कि गणेश जी का मूर्ति जो और उसके बगल में बैठे हुए मूस, उसमें पूंछ भी बना लिया पूंछ के साथ। तो तरक्की हो रहा है हमारे त्योहारों में, और खास करके जब पितृपक्ष है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंतर्गत में। हम पितृपक्ष में बबली जी आप बताइए आप क्या करते हो पितृपक्ष में।
4: पहले तो मैं ये बताती हूँ, जब हम भारत में थे तो छोटे थे तो हमारी दादी ने यानी आजी ने बोलना कि आज तुम जब स्कूल से आओगे तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा। हम बच्चे थे, हमने कहा बहुत खुश होते कि हाँ आज खाने के लिए खीर बनेगी और वो अरे सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जब हम स्कूल से आना तो कहना बड़ी भूख लगी है, तो देखना हमारी बड़की भाई और मेरी मम्मी ने और दादी, तो हमारे इतना काम नहीं करते थे वो बेचारे, उन्हें घुटनों का दर्द था तो बैठे बैठे सब कुछ समझाते थे। तो देखना रोटी चावल दाल सब्जी खीर सब कुछ बना है, तो हलवा भी होता था मोहन भोग हाँ। तो अरे वो मंदिर जाते थे अपना जो कार्य करना है हमारे दादा करते थे। तो उसके बाद जब हमने खाना खाया बड़ा स्वादिष्ट है ये, तो उसमें एक प्रसाद आ जाता है। तो जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं भगवान का नाम लो तो वो भोग बन जाता है। तो बड़े स्वाद से हमने खाना करना, तो कहना किस लिए है, तो उन्होंने बताना जो तुम्हारे आजा नहीं है तो आज उनके लिए श्राद्ध किया है, तो पंडित को दान देना गुरुद्वारे में दान देना। तो ऐसे हमारी आजी ने बताना हमको। तो फिर हम बड़े हुए तो फिर तो अपने से अरे आ जाता है कि कैसा त्यौहार त्यौहार या ये भी एक तरह से ये पितरों का त्यौहार है,
3: पितरों का त्यौहार।
4: हाँ जी, तो धीरे धीरे फिर सब पता चलने लग गया कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे करते हैं।
3: हाँ, दिन पर दिन ऊपर ऊपर सब जोड़ देवे है और दिखावे है, बतावे है कि कौन ची है, कैसे पितर ओके चाहे सेवा करे से। के हमारे देखे में जीते जी सेवा कर ले रहे भगवान। हाँ, जीते जी में जितना मिले बुजुर्ग अपने आप को अपने जो सामने ऐसे हम लोग बैठे एक दूसरे के सेवा कर ले उसमें जितना सुकून मिले है। तो जो पितर के से पूजे से आज है इसे चले पितृपक पितृपक तो इसमें जब भी पूजा करिए एक्स्ट्रा भी पूजा करिए तो दिल में इतना सुकून मिले हम बताइए। और ये पितर के जीते जी जे अपन माता पिता के दुख देवे है और वो माता पिता जो गुजर जाए दिल लाइफ इन द में लाइफ इन द लाइफ में ना रहे शरीर में ना रहे तो उस पीढ़ी में दुख आवे है, बाधा आवे है। बाधा है जैसे कि पंडित जी बताइए कि घर में जैसे बेटा बेटी है तो उनका ब्याह भी ना हो पावे, रुकावट रहे, ऐसे ऐसे बहुत से तरक्की ना हो पावे, तो मंगे कहूँ काम खोजे वो पे बाधा होवे और जो ये भी काम करे दिखे दुई तीन रोज में छूट गया आपके कॉलेज का नाम हो ये, ऐसे कुछ ना कुछ बाधा आ रहे तो ओकर खातिर भी मौका मिले है जैसे आज साल में
5: आने के लिए। हाँ, काम करके सर
3: जी जैसे ईसाई पे है पितर पितृपक्ष जो चल रहा है तो यहाँ पे भी सुधार कर सके है और तो कि पितर लोग के खातिर पूजा कर दे, पानी दे दे, श्राद्ध कर दे, उस सब के भी एगो तरीका हो। पंडित से जरूर से पूछो, पंडित ना है तो गूगल महाराज से भी पूछ लो, देख लो उसमें तो भी बतावे कैसे कैसे ढंग से करे,
5: सब तरीका से सब कुछ सीख सकते हैं ना। हाँ। सत्संग में जाओ, जितना सत्संग में सीखने मिलता है ना और मंदिरों में तो सब कुछ भी उसे भी कर सके है।
3: जी शीला जी, मेरे ख्याल से आज के इस समय पे जैसे ये चल रहा है तो मंदिर में भी मौका हैगा श्राद्ध के जल चढ़ावे ना,
1: तिरंजलि अनेक अनेक मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम रखा जाता है। हाँ। और पर आप अपने घर से भी कर सकते हैं, तिरंजलि दे सकते हैं और उस अंतर्गत में अभी कुछ और हम लोग सुनेंगे। अच्छा। क्योंकि मास्टर जी जो भारत से अपना संदेश रखने वाला है।
3: हाँ।
1: तो अभी क्यों ना शांता जी
3: ने एक बार क्योंकि हमने देखे एक मंदिर 10 साल पहले के बाद में बात बता रही हूँ, वो मंदिर भी जब ऐसा दिन आया था ना पितृपक तो वो भी श्राद्ध करा रहे थे, जो भी चाहे अपने दिल से जाकर वो कुसा पकड़ाते थे और बताते कि ऐसे करो ऐसे करो, अंजलि में वो जल ले वो जिसमें दूध और काला तिल है और सब ऐसे तो ऐसे दाएं हाथ ऐसे ना। हाँ ऐसे, क्योंकि हाथ जो है ना चार कोना है ना, मिडल फिंगर के है, दाएं हैगा पिंकर एंड हैप्पी दी हम पालम सो, और चार कैची से चार देवता के समर्पण करल जा है, दाएं कैची से वो पितृ और यहाँ जो मेरे फिंगर है वो देवता और
1: शांता जी तो बड़ा चक्कर में छोड़ दिया हम लोग को, पर ये भी है इसका सबका अपना अपना मतलब है शांता जी।
3: ऋषि यहाँ पे है गा जाते सैलफ जैसे पंचामृत लेवे दैट इज फॉर योर सैलफ,
1: कहने के तात्पर्य ये शांता जी तीन ऋण हम लोग का होता है ना। वैसे तो मैं एक गाना चलवाना था पर फिर भी बातें बात में समय निकल जा रहा है और तीन ऋण हमें उस पर ध्यान देना है। एक है जो ऋषि ऋण जिनसे हम लोग सीख पाते हैं, ऋषि द्वारा जो लिखे गए सब पुस्तक आदि ग्रंथों जिसे हम सीख सके। एक है जो पितृ ऋण और एक है जो देव ऋण। तो ये तीनों ऋणों हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है। और ये इनके बारे में हम कहाँ पर सत्संग में जाए, मंदिरों आदि में, तो हम वहाँ पर सुन पाएंगे। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी, और फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपने सुने और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शांता खेमाई जी, जो पनेल के पीछे से कुछ ना कुछ गाना खोज खोज करके रख देते हैं। कहते हैं कि शांता चलते हैं तो पिटारा ले करके, और कौन कौन सा गीत उसमें है ये हम सबको नहीं पता होते, पर फिर भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ हर बार आते हैं। शीला जी, आप हमें बताइए ये कि आप औदरन के साथ वहाँ पर और कार्यक्रम करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ औदर जो हमारे पुराने गीतों है, जबकि ना कि सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्योंकि पहले होते थे ना, पहले जब शादी होवे तो चाहे जोन हुए, गरीबताई हुए या अमीर है या गरीब है, फरमाइश तो दुई हफ्ता बजी,
1: वो सही बात,
0: तो उसके बारे में थोड़ा से सुनाइए।
1: देखो जब सब बैठते हैं ना तो हम लोग पुराना गाना, पहले के पुराना गाना हम लोग धरेला यार सस्ता साठ है, तो जब उस समय के गाना हम लोग धरेला तो उन लोग के इतना उन लोग के सब यादें आते हैं ऊपर कि उन लोग अपने में इतना बात करते हैं कि ये तो मेरे मेरे जब मेरे शादी हुआ था ये तब गाना बजा था, वो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग वो पहले पुराना के सब जितना उन लोग के यादें बा सब ऊपर आते हैं, तो उन अपने में गुपचुप करते बात करते हैं गाना, कोई कोई के हंसा देता है, कोई के रोवा देता है, आंसू निकल आते हैं भी
2: जी।
1: वो भी देख करके बहुत दुख लगता है गा भी, तो भी सोचता हूँ जो मन में है उन लोगों के वो निकाल देते हैं अपने।
2: हाँ ऐसे होता ना विशिला जी कि शरीर से कमजोर है बाकी दिमाग अबे जवान है,
1: चलते है दिमाग बहुत, हमें
2: दिमाग जवान है,
1: हमें बहुत गर्व है सबके ऊपर, कि वो लोग आते हैं उन लोग ना उन लोग के उम्र ना देखियो, जो उम्र देखियो तो सोचियो कितना उन लोग कर लेता है, तो मैं भी कभी कभी चक्कर काट लेता है अपने के खातिर, सोचता हूँ अच्छा चलो देखो ये तो भी हो गया ना, वो भी बहुत बहुत गर्व है सबके ऊपर कि भी आते हैं सभी लोग वहाँ अपना दिन बिताते हैं, बहुत अच्छे हैगा कि यहाँ ऑनलाइन में ये सब वो सब मोहलक है कि वो लोग आकर के दिन बिता सकते जो अकेलापन होता है घर पर, और ये हैगा हम लोग के वहाँ पुरानियों के लिए बहुत अच्छा है।
0: शीला जी, हम रेडियो बना रहे हैं और रेडियो में तो मैं नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी इसमें मैं थोड़ा से कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, ऐसा कि मेरा जो आजी जिसे दादी कहते हैं, आजी जो एम्स्टर्डम शहर में रहते थे और वो ऐसा बना लिया था, अब देखो हम लोग के जब बचपन रहे जवानी रहे तब कभी काल के कभी सच झूठ चलता है और आजी तो बैल करते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने इतना बार फोन कर कर के मुझे रास्ता पे लाया था कि इतनलक वेचित नीत आंदर्स फन आलसे का अस्परा खैर दन मुतिक बैहार खान, और ऐसा बना लिया था। आप आजी लोगन के कितना क्लाइंट केंद्र है, पर एक क्लाइंट के मसे उमें मसे हम मेरे लिए कि हर सप्ताह में हफ्ता में सात दिन होता है, और सप्ताह में सात दिन होता, पर हफ्ता में सात दिन में से एक दिन हम अपने आजी के साथ जाते थे खाने को, और खाना दनहा खम रहते और यहाँ से लेकर जाते वहाँ पर, वो उनका ऐसा बना लिया था कि ऐसे बनाइए इच जो बनाइए दी कॉम्बिनेशन फन जो खरेख्तों है
1: पहले के हाँ खाना
0: कि हमें भी सीख गए थे खाने, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था पर सीख गए थे खाने को। अब देखिए टमाटर जैसे भरना, टमाटर से आप चोखा बना सकते हैं, आप टमाटर से केचप बना सकते हैं, इसी प्रकार से और जो कड़वा करेला है क्या क्या नहीं बना सकते, किस प्रकार से बनाते थे और क्या कॉम्बिनेशन, कौन ब्रैनो बोन से, कौन उर्दी के दाल से, कौन जन तो दी कॉम्बिनेशन एंड एक फिन दैट एक आते दैट हम मिस अपने आजी के, तो दोस्तों सुनने वालों, कहने के तात्पर्य यह है कि हम ये इस कारण रखते हैं कि अगर आपके आजी नानी है अब्बे, क्योंकि एक चीज और रहा शीला जी, हम दो घंटे वहां रहते थे और दो घंटे में आजी इतना बात बताते थे पहले का अब का, दो घंटा लगातार, तो आज नहीं है,
2: आजी अकेले रहती थी,
0: आजी अकेले रहती थी। अब देखो यहाँ पर है ना कि ऑनलाइन वार्निंग है एंड तब ऐसा होते थे। और बबली जी कुछ कहना चाहते कब?
3: नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी जब आस प्राक होता था आजी से, अगर इनके काम चेंज हो जाता, कभी फ्रुकु दिन में जा पाते थे, मेदाख दिन हो जाती, तो नहीं, जब मैंने आजी को फ़ोन करके कहना आजी आज नहीं आ पाएंगे, इनकी काम चेंज हो गया, दोपहर को जाएंगे, तो आजी जैसे एक तरह से मायूस हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा कि इन्होंने आना था और आज नहीं आ पाए, तो कहना हम अगले हफ्ते आएंगे, तो कहना अच्छा बेटी अगले हफ्ते ज़रूर आना। मैंने कहा ना अच्छा,
0: कहने के तात्पर्य यह है ना कि आजी नानी लोगों दी औदरन दी फरलांगन नारन क्लेन केंद्रन
1: केंद्रन
0: आशा लगाए के बैठे,
1: आशा लगाए के बैठे कि हमारा लड़कन आए, अच्छा लड़कन ना आए, क्लेन केंद्र चल जाए, हाँ। नाती पोता चल जाए, एक दिन जा कर के देख लो, चाहे रोज ना जाए पाइयो सातों दिन, बाकी हफ्ता में एक दिन जो कि पांच छह गो बा, तो उन लोगन बांट ले,
0: बांट लो,
1: बांट करके जाओ, देख लो उन लोग के क्या कमी है, तनी से बैठ के बात कर ले, भोजन कर ले, जैसे आप बताते हो,
0: क्योंकि उन लोग के खरेखतल से,
1: हाँ उन लोग के जो पहले के खाना है जो बनाते थे ना, पहले तो हम जानी सब बनावे बिना खाली लहसुन प्याज से, और ज्यादा उमन कुछ और ना डालत रहे, मसाला जो पीस के बना देते ना, और ज्यादा कुछ नहीं डाले, जो ईसाई जितना आ गया है सब है, स्पेस रही है, सब आ गया डालने के लिए, वो नहीं, बाकी उन लोग के हाथ के खाना इतना स्वादिष्ट होते थे, तो वही सीख सीख करके हम लोगन कुछ ले के चला चल आईली है कि उसे हम लोग बनाए ला, बाकी जो है बोली ला कि लड़कन जाए के सीख लो बैठो, जो पहले के बात है।
2: शीला जी आप सही कहते हैं, मैं काहे के मैं कहती हूँ, काहे के मैं ये बोली कि आप सही कहते हैं, क्योंकि हम जब अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठती हूँ ना सहेली लोग के साथ, तो वो अक्सर यही बात करते कि मेरे को बहुत पछतावा है, मेरी माँ कहती थी, मेरी आजी कहती थी सीख लो, अगर आज मैं सीख ली होती तो आज बहुत काम निकलता, ऐसे सब कहते हैं, पछतावा है, बाद में पछतावा होता है,
1: वो सही बात, वो सही बात। देखो हम अपने की जो बोली ना, मेरे आजी जो थी, तो आजी जानते थे कि मैं कंदोरों को बैठी थी ना सूरीनाम में, तो जब कोई जाती थी उनके पास, मेरी सबसे सनीसा पठाते थे, मैं जाती थी आजी के पास, बाकी रोज नहीं जा पाती ना, बस सनीसा शीला के बलाई दियो, तो जाए तब आजी का भय, तो आजी धीरे से कनवा में बोले पैसवा कब बटेगा और खाना जो बनाते थे ना, खाना बना करके भी अगोटे बैठ के अगोटे थे ना, तो हम लोग जाए तो पूछी आजी एक एक कैसे बनेलो, तो जब आजी बतावे तो मोरी में धर ली, तो घर पर जब जाए तो हम भी उन्हीं तरीका से हम भी ट्राई करते, हम भी अपने बनाते थे,
2: तो उसने
1: वैसे ही बने बने ऐसे सीख गया, बहुत कुछ सीखा है। और जब पुरन के बैठी ला हम लोगन, तो कभी कभी हम लोग के भी कोक एक्टिविटी रहे ना पकाने के लिए, तो वही पुराना खाना हम पकाए सबके खातिर, तो बहुत लोग के इतना खुश हो गए, तो सब पूछे भी कि कहाँ से ये सीखले है, तो देखो भी कि सीख लो वो कुछ आजी आजा से, माए बाप से सीख लो, तो ओके अपने काम में लाओ, कर सकते हैं भी,
0: क्योंकि एक ना एक दिन जब गलती से एक चीज जो जिसमें कुछ ना करने से, वक्त कहते हैं वक्त बगैर कुछ करे आगे बढ़ते जाता है, और एक न एक दिन दांत जब गिरने लगेगा, आँख से कम देखने लगेगे, और पैरों जो अपने मनमानी करने लगेगा, तो पछतावा ना हो। तो ये तीन बार तीन घंटिया जो जीवन में बचते रहते हैं, तो आपको जो है अपने ग्रोथ ऑर्डर्स कहते हैं ना, नई दवा उसमें ग्रोथ ऑर्डर्स ऑर्डर्स के लिए, तो खूब मस्त और कोई कोई कहते हैं कि भाई वह बन अदृक, वह बन अदृक, वह बन दृक लीफ एंड वह बन दृक दृक दृक द किंद्र मुतना द फुटबॉल एंड द, ये कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो किंद्र ना द फुटबॉल तो बाद में जब मुसीबत पड़ते हैं बच्चों को पितृ दोष लगते हैं और पितृ दोष ऐसा चीज है जो हाँ कितना दिन छोड़ेगा नहीं,
2: कई पीढ़ी तक जाए,
0: कई पीढ़ी तक जाए, कहीं कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा तो कहीं कहीं घर में बेटा बेटी और जाकर के दूसरा रास्ता पे चल जाता है और ऐसा ऐसा चीज जो पीने लगते हैं, ये सब पितर के और सेवा में कुछ ना कुछ पितर ऋण ऋषि ऋण और देव ऋण का और जो बोया हुआ फल है। तो आप समय निकालिए, समय निकाल करके और इन दिनों में और ना इन दिनों में सिर्फ मार्क टाइट फॉर योर ऑर्डर्स। शांता जी जो कोई और गीत को रखने वाले हैं हम, शीला जी अगर कुछ और कहने वाले हैं
1: जो यही मैं कह सकता हूँ कि देखो माता पिता के इतना प्यार देवो दुलार देवो वही वही सबके कमी है का उन के बात सुनो क्या उन मानता है तनी थोड़ा के बैठ के सुन ले वो तो उन लोग के भी तसल्ली हो जाते हैं। देखो हम लोग भी हम पुरनियन के साथ काम करती हूँ तो जो उन लोग के तनी से प्यार दे दो दुलार दे दो तो उन लोग इतना खुश हो जाते हैं। उन लोग के खाली पूछ लो कैसे बांटो का भोजन कर लो भोजन कि ना भोजन कर लो कैसे बांटो कैसे आप सो सुत लो बांटो उतने सब हाँ खाली आंदा खाली वही उतने दे दे उनके तो भी ठीक है। जा करके एक बार हफ्ते में देख लो क्या कमी उनके घर में कुछ किन के ले जा करके दे दो उन भोजन पकाते हैं क्या कमी है या तार कर लो ज्यादा हाँ ईसा तो कितना मोबाइल है जब देखिला सब मोबाइल लेके आवे है ना तो हम लोग सोचे इस सब तो यंगर से आगे निकल गए है।
0: हाँ और ना ओसन मोबाइल शीला जी स्मार्टफोन स्मार्टफोन फेसबुक है और
1: इंस्टाग्राम
0: है
1: सब कुछ है
0: और
1: हमें समय ना लगे है उतना सब ताकि उन लोग के जमले अच्छा उन लोग के और ज्यादा समय है ना
0: बिल्कुल
1: बाकी ठीक है कि उतना है उन लोग के भी जो बहुत या उनमें जब देखी ला कि कैसे सब उनमें अपना वक्त निकालता है भी कुछ है ताक ताक करके कि भगवान के कुछ उम्र होते हैं ना कृष्णा के कुछ होते हैं सभी कुछ ताक ताक के सब अपन जो बहला लेता है।
0: सुंदर सा संदेश और शीला जी जो रखे आज। शांता जी छोटा सा म्यूजिक कुछ सुनाने वाले हो आप
2: जी

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी जो चून करके रखे हुए कि बुढ़ापा किसने देखा है शांता जी।
1: हाँ, और कहते हैं जो भजन कहते कि भजन करो भरी जवानी में, भजन ये नहीं है कि आप माला जाप करो सिर्फ और जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, नहीं, भजन ये है कि सेवा करना, अपने एक दूसरे के सेवा करना, दो बोली बोलना प्रेम से, वो भी एक भजन है।
2: सही बात शांता जी।
1: हाँ, घर में खाना बनाओ पकाओ वो भी एक भजन के तरीका है।
2: सही बात, खाना बनाओ भजन करते जाओ और वो खाना एक तरह से
1: प्रसाद
2: बन जाता है और जितना आप भजन करोगे उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा।
3: सही बात
1: भी। हाँ, कहते हैं कि भजन करो भरी जनवानी में कि बुढ़ापा किसने देखा, कि कान से बहरे हो जाओगे कभी लुंगड़ा हो जाओगे तो सोचो हाथ कत मां खदान ना ऐसा तला
0: तो पैसा कमाते रह गए। अब देखा जाए शीला जी, हम औद्र तहस में जाओ तो बचपन में उन लोगों ने अपन लड़कन के पोस पाल के बड़का कर, बोले 10 लड़कन को पोस पाल के बड़का कर देते हैं एक माता, पर एक माता के सेवा करने के लिए 10 लड़कन के लड़कन भी 20-25 हो जावे चाहे पर ना हो पावे। और उसमें वो शक्ति था कि देखा जाए कि हम लोग का कोई त्योहार, शांता जी कुछ कहने वाला था, शांता जी लेडीज फर्स्ट, आप सुना दो।
1: इसीलिए मेरी ख्याल से वृद्धा आश्रम बना है, क्योंकि बच्चे जो है वो सब आगे देखे पीछे ना मांगे देखे, हमारे माँ बाप भी आगे देखते रहे और आगे देखते देखते और जो पाछे वाला पीछे रह जाता है और जो पीछे रह जाता है जो उस जो हेल क्रुपन जो है पीछे रह जाए तो उस सब फर इंसान होए लगे है बस खेन अर्थ वे नेक्स्ट जवेत से ओगनी वात से मुतदूर एंड एक देंक दे देंक एक या दा दा रीड इज दैट देयर न बयार द हाउस ऑर्डर न हाउस फॉर ऑर्डर से हमार dat ze bij elkaar kunnen komen, hun leed kunnen delen, hun ervaringen van vroeger kunnen delen, met elkaar kunnen praten, communiceren, zodat ze toch het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.
3: Wo sahi ba jo bole hai Santa Didi ji jo dekho jab un logan isai jo bimari bhi aayi gayi hai dementia bolte hai na कि इसलिए उन लोगन आते हैं या ऐसे घर में बुजुर्गों घर में रहने के लिए कि घर पर बच्चे लोग सेवा ना कर पाएगा ऐसे माँ बाप के कि कर सके हैगा बाकी उनके स्पेशल सेवा चाहिए कोई की चाहेगा एक बार फिर घर में धरे के और लड़कन ईसाई लड़कन सब कोई काम करे हैगा तो जब सब कोई काम करे हैगा ओके भी घर में छोड़ के जाइए तो अकेले भी दिन भर अकेले रहे तो इसलिए वो घर जो है बना है सबके लिए कि जा करके सब भी उमन धर सकते हैं, बाकी धर सकते हैं कहे खातिर ना कोई बोले हमें तो शर्म लगे अपने माई बाप के ले जा करके वहाँ धरा, हम बोली नहीं ये शर्म के बात नहीं है, आप घर पर उनके सेवा नहीं कर पाते हैगा जो दिमाग से जो तनी कम हो गया है ना जो चाहिए उन्हें ही दे पाएगा, बाकी शर्म कब आएगा जब अपने माँ बाप के ले जा करके वहाँ धर दियो इस घर में एक ब्रिज आश्रम में जो हम लोग के आएगा जन्ना जो उनके देखे तब तो वो शर्म के बात है, बाकी जो धरे आएगा वो शर्म ना है, वो लोग मजबूरी है
1: माने मैं से दीदार वेयर कर दी से दी से
0: प्रोफेशनल्स
1: तो वे तो हो समुद्र आम पाल
3: या और जैसे आपने बोला जैसे आपने बोला है कि अपने लिफ्टेक खनोत से है अपने अपने जो उम्र के बराबरी हैगा उनके साथ वो बैठ करके बात कर सकते हैगा वो सही बाजोन बोले है।
1: हाँ,
3: वो ठीक हैगा घर पर बैठिए बच्चों के साथ भी सब कुछ ना शेयर कर पाएगा और वहाँ जो है तो अपने सब कुछ आता है मुड़ी में ना बात करने के लिए।
1: हाँ, और बहुत ज्यादा घर पे रहोगे एक बार जो दो दफे तीन दफे हराल करे तब बच्चे बोलेगा चुप रहो मान एक भाव बतिया बोले
0: अरे शांता जी हिसाब से क्यों ना न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं और कमर्शियल की ओर तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हां
3: तो वैसे होएगा तो बोलते कि वो उलोक के कैनस नहीं हैगा
1: कैनस ना रहता
3: कैसे उन ना पहले हम लोगन ना जाने थे दमयंती का है
0: yeah.
3: अब जब हम लोगन जान के लिए अब तो ढेर प्रचार बा तो जब ऐसे होवे कोई के तो बच्चन के चाहिए गूगल करके देखे के क्यों मेरे बाप माता पिता इतना हैरान करते क्यों ऐसे बोलता है क्यों तो उन जब देख लेगा ना तो उन लोगन दूसरा व्यवहार दूसरा का व्यवहार करेगा माता पिता से
1: जी. तो यहाँ तक था ये प्रोग्राम इस वक्त के लिए.

0: कार्यक्रम जो आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया जाए, तो अनुराधा जी जो भारत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना संदेश रखने वाला है कि जीवन में अकेलापन के अंतर्गत में अनुराधा जी क्या सुनाने वाले हैं, तो हमें अनुराधा जी आपको हम चंदे में ला रहे हैं, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आप अपना संदेश को सुना सकते हैं।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और आपका जीवन स्वस्थ चल रहा होगा, आप अच्छा भोजन खाते होंगे और अपने परिवार जनों के साथ वक्त व्यतीत करते होंगे। देखिए, जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार बनाकर रखें, अपने परिवार वालों से संबंध अच्छे रखें, सबसे प्रेम से और रहें और अच्छे बोलें एक दूसरे से। देखिए, हमारा सभी का जीवन एक ऐसा समय होता है जिसमें हमें नहीं पता कितना लंबा हो गया, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जितना भी जीवन हमारे पास हम जीते हैं, हमें होना चाहिए कि हम उसे भरपूर अच्छे तरह खुश होकर बिताएं। संजय जी, आज देखिए हर इंसान के पास, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम हर इंसान के पास हमारा जो जीवन है वो अलग अलग किस्म के हम तरीके से हम व्यतीत करते हैं। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। भले ही हम सब मनुष्य हैं, पर हम सब अपना जीवन अलग अलग ढंग से हम बिताते हैं। देखिए, हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग रहने के तौर तरीके होते हैं और परिवार में अलग अलग लोग होते हैं, तो हर इंसान का जीवन हर एक दूसरे से अलग होता है। भले ही हर इंसान का परिवार होता है, उसे जीवन में रहने के लिए पैसे कमाने होते हैं, उसको अपने हर चीज़ करनी होती है, पैसे कमा कर अपना पेट भी भरना है, तो काम भी करना है और परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बच्चे सब होते हैं। पर देखिए, सब परिवार होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक समय आता है कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और या तो उनकी शादी हो गई है या वो कहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग रह रहे हैं या साथ भी रह रहे हैं, आप अपने हम सफ़र के साथ जीवन बिता रहे हैं या कभी कभी हमारा हम सफ़र जो होता है वो हमें बीच राह में अकेले भी छोड़ कर चल जाते हैं, तो हम अकेले रह जाते हैं। हमारे माता पिता जब तक साथ होते हैं तो

0: है, नहीं तो हम अकेले भी अपना जीवन हमें व्यतीत करना पड़ता है, बच्चे भी हमें एक समय पर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि हम बहुत बार हमें एक अकेलापन सा लगने लगता है कि जीवन में हम बड़ा एक अकेलापन ऐसे लगता है कि हम जीवन में इस आए हैं, हम चाहते हैं हमको सब प्यार करें, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर इंसान को अकेलापन लगता है। तो ये जो आज मैं ऐसी इस पर बात करना चाहूंगी, इस विषय पर, क्योंकि ये विषय जो ऐसा है, हर इंसान कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है अपने जीवन में, और वो ये बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी हम आपस में एक दूसरे से लोगों से बात भी नहीं करते हैं, भले ही आप अपने दोस्तों के साथ हो, पर आप हर से हंसी खुशी बात कर रहे हैं, पर जब आप घर वापस आते हैं तो आपको एक अकेलापन महसूस होता है। और ये बहुत बार ये इंसान हम लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे से ये बात नहीं करते, और अंदर ही अंदर इसको हम अंदर महसूस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर काफी चर्चा, मतलब जो चर्चित ये विषय इसलिए है क्योंकि ये आजकल का आजकल हर इंसान इससे जूझ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, और संजय जी आगे बढ़ते हैं तो एक गीत हो जाए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगी।
1: जरूर जरूर अनुराधा जी, एक गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। नहीं शांता जी, क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा से चला देते, क्योंकि संदेश ज्यादा है।
0: जी
1: हाँ, समय के कमताई और काम के दबाव, तो थोड़ा से गीत को यानी इंस्ट्रूमेंटल चला देते हैं अनुराधा जी।

0: आगे बात लेकर चलते हैं आगे। हम यहाँ अकेले हैं, कभी कभी जीवन के किसी शांत क्षण में जब चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, तब भीतर से हमें कई बार एक धीमी सी आवाज हमारे अंदर उठती है और वो कहती है हम यहाँ अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन लोगों के ना होने से नहीं आता, ये नहीं है कि हमें अकेलापन तभी होता है जब हम अकेले हैं। कई बार घर में घर भरा होता है परिवारजनों से, घर में बच्चे हैं, आपका आपके परिवार में आपकी पति पत्नी आप दोनों में से जो भी हो हैं मौजूद हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते मौजूद होते हैं। हाँ, पर कितना भी कुछ हो जाता है, कितने लोग हैं घर में, तब भी आपको आप कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो और मेरे को अकेलापन सा लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है, देखिए बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है जैसे अब मैंने कहा कि आप अकेले रह रहे हो, ऐसा होता है लोग अकेले रहते हैं घरों में अकेले रहते हैं, तब तो हम मान सकते हैं कि आप अकेले हैं। पर अकेला होना और अकेलापन ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आप अकेले रहकर भी खुश हो सकते हैं, अपने जीवन में बहुत खुश हो सकते हैं और पूरा पूर्ण महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अकेलापन वो है जब आप लोगों से भरपूर हैं, आपके आसपास लोग हैं, तब भी आपके मन में जो विचार होता है या आपको जो आपकी जो आपको फील होता है, जो आपके मन में चल रहा होता है कि मुझे एक अकेलापन सा महसूस होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको फोन पर संदेश भी आते रहते हैं, ये नहीं कि लोग आपसे संपर्क नहीं करते, लोग आपको आपसे बातें भी करते हैं, फोन मिलाते हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं और लोग आपके हालचाल भी पूछते रहते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में एक खाली जगह बनी रहती है, एक ऐसी जगह जहां हमारी जैसे कहते हैं ना अनकही बातें, हमारे डर, हमारी थकान, हमारी पीड़ा चुपचाप बैठी रहती है। तो वो ऐसी जगह होती है जैसे जो वो हमारे अंदर ही दिल के अंदर रहती है, हम किसी को दिखाते नहीं हैं, ना ही हम उसके बारे में किसी से हम बात करते हैं, और वो ऐसी पीड़ा होती है अंदर इंसान के कि वो उससे बस उसको अजीब सा वह महसूस करता है, जो जो इससे जूझ रहा होता है उसी को पता है कि वो उसको वो अकेलापन लग रहा है। तो ये एक बहुत जो कहते हैं ना, ये जो परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं, हो सकता है कि आपके घर में आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति है जिससे आपको यह लगता है कि भाई दुख के आप दुख आपको पीड़ा हो रखी, आपको दुख से आपको गुजरना पड़ा हो, तो इंसान को थोड़ा सा अकेलापन लगता है। पर हम ये जो अकेलेपन की बात कर रहे हैं वो ऐसा अकेलापन है जब आपके आसपास सब परिवार वाले भी होते हैं, आपके दोस्त जन भी हैं, आप दफ्तर भी जा रहे हैं या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको एक अंदर सा खोखलापन आपके अंदर महसूस होता है। और एक आपको लगता है कि जैसे जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, पर ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है, हम वहां हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम बहुत बार दुख महसूस करते हैं। और ये जो परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, ये हम कभी कभी हम किसी से बात भी नहीं करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हम ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो ये बहुत एक गहरी समस्या है जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि हम उस समस्या को हम उसका समाधान ढूंढें, उसके बारे में हम बातचीत करें, चर्चा करें कि ये अकेलापन क्या है। और क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान को हम देखें, हम हर इंसान का जीवन अलग होता है, पर हमें ये अकेलापन जो है वो हमें ऐसे में परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए जिसमें हम इसमें हम फंस कर रह जाएं, क्योंकि ये बड़ा दुख पहुंचाने वाली परिस्थिति होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें और अच्छा महसूस करें। तो ये आगे मैं बात करती हूँ इसके बारे में। संजय जी, एक गीत हो जाए अच्छा सा, जिससे कि जिनको ये अकेलेपन के से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा पल भर की खुशी मिल जाए। चलिए आगे एक गीत हो जाए, फिर आगे बात करते हैं।
1: तो दोस्तों सुनने वालों, हम इंस्ट्रूमेंटल के ओर बढ़ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटल जो हम चलाने वाले हैं, क्योंकि

0: तो अभी हम सब सुने जो अनुराधा जी अभी और भी संदेश रखने वाले हैं, पर शीला जी इस पे अब देखा जाए कि हमारे औदर के लिए काफ़ी चीज़ें जो बन चुके हैं ना, अपंग ढेर सारे हैं जो यानी कि जब मन करे तो रोज ही जा सकता कहीं ना कहीं।
1: वो सही बात, इसलिए यहाँ पर जो है इसे हॉलैंड में इसे बहुत कुछ खोल गया है ना, कि जहाँ जा करके हम लोग के बुजुर्गों लोग पुरानियन जा करके अपना दिन बिता सकते हैं, जैसे कि या जैसे ब्यूथ हाउस पहले रहा ना, पहले ब्यूथ हाउस अब वहाँ पर बन गया कि सत्संग होवे लगल बा, कि पुरानियन आवे वहाँ बैठे, योगा है जाने के लिए, बहुत कुछ तरीका है कि जा करके अपना दिन सब बिता सकते हैं। और इनमें बच्चों के भी चाहिएगा उन लोग के सपोर्ट करे के कि माता पिता लोग निकसे घर से तनी से ले जा करके उन लोगन पहुँचा देवे, माता पिता के ले लेवे। इसे तो टैक्सी कितना यहाँ पर कितना सहारा हो गया टैक्सी के ना, कि अपना ले सकते हैं वो ला करके घर पर तो के है ले करके ले जाएगा, जहाँ तो के काम हैगा वहाँ उतारेगा, वहाँ से उतार करके लाकर फिर घर पर पहुँचा देता है। कि इनमें यही मेरा संदेश है कि निकलो माता पिताओ, जाओ बाहर, बाहर देखो कि अपना दिन बिताओ, अपना लोगन अपना वक्त जो हैगा ना, वक्त हम लोग के जैसे पंडित जी बोलते हैं कि वक्त नहीं अगोरता है, वो सही हैगा कि हम लोग जा करके अपना टाइम वहाँ पर कुछ ना कुछ से जोड़ा रहेगा। और भी कि हम लोगन जब जितने बहरे निकलियो उतना जो बहलीगा आप लोग के अकेलापन जो महसूस करता है घर पर। अब हम लोग के अनुराधा जी कितना बताया कितना अच्छी से, जो अकेलापन है ना, अकेलापन बहुत कठिन है, इसलिए कि दर दर पर जरूर कुछ ना कुछ हो गया समय बिताने के लिए, कि अकेलापन तनी से दूर होवे, कि महसूस ना होवे कि आप अकेलो बाटो।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, और जिस प्रकार से शीला जी कहते हैं और अनुराधा जी जो दूसरा साइड एकदम भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो अनुराधा जी और भी संदेश हम लोग के लिए रखने वाले हैं, आप अपना संदेश को रख सकते हैं।
2: और समझा जाए कि ऐसे अकेलेपन में ये क्या अकेलापन क्या है, ये अकेलापन किसको है? देखिए जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, किसी के लिए माता पिता बनते हैं, किसी के लिए जीवन साथी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए सहारा। तो हम सबकी जो हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, तो हर इंसान की जैसे कहते हैं ना कि हर जीवन में उसके अलग अलग परिस्थितियां हैं और उसके अलग अलग रिश्ते हैं जो सबके साथ उसको निभाना पड़ता है। हम सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हम सभी रखते हैं और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सहारा बने, हमने दूसरों की लिए हम वहाँ थे, जब हमारे माता पिता थे हम उनके अगर बच्चे थे तो हमने उनको जरूरत पड़ी हमने उनको सहारा दिया, हमारे बच्चे थे अगर हम उनके माँ बाप हैं तो हमने बच्चों को जब उनको कुछ सहारे की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी, उनके सहारा जब या हम किसी के पति हैं या पत्नी हैं एक दूसरे की हमने जब करा। तो हर जगह जब जिसकी जैसी आवश्यकता थी वहाँ हम ने दूसरे को सहारा दिया, चाहे भले ही वो दोस्त है घर में, किसी को भी, तो हमने हमेशा सहारा तो बने, पर कहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है, तब हमारे पास केवल हमारी खामोशी रह जाती है। तो ऐसे भी ऐसा भी होता है कि जब हम हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हमने जीवन भर दूसरों के लिए करा, आज ऐसा समय आ गया कि हमें खुद किसी के सहारे की जरूरत है, तो ऐसे में जब ऐसा एहसास होता है तब हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हम वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी को कि भाई आज ऐसा भी दिन आ गया है कि आज हमारे मन में ऐसा भी संदेह है, ऐसा भी हमारा मन में चल रहा है विचार कि आज मुझे एक अकेलापन लग रहा है, मेरे को एक सहारे की जरूरत है। और ये बड़ा ये ऐसा नहीं कि ये आप ही एक हैं जिसके साथ है, ये अनेकों के साथ ऐसी स्थिति आती है। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको ये लगता है ये होगी? नहीं, ये नहीं है। हर इंसान को लगता है कि भाई अगर हमारे पास खाने को अच्छा है, हमारे पास कपड़े अच्छे पहनने को हैं और हमारे पास मकान है, तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और ये बस हम बहुत खुश हैं। पर ये हम गलत सोचते हैं। उसकी तो ये नहीं कि हमें खाली रोटी, कपड़ा, मकान ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या होती है? समझा जाना, जहाँ लोग हमें समझें, कोई दूसरा इंसान हमें समझे। ये जो बाहरी चीज होती है ना, खाना पीना और घर होना, पर सब कुछ है, कपड़ा सब है, आपका जीवन बड़ा, आपका बहुत अच्छा, आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर ये कोई ये नहीं समझता कि इस सब का कोई अर्थ नहीं है अगर आपको कोई समझने वाला ना हो। तो सबसे बड़ी अपेक्षा हर मनुष्य की है कोई उसको समझने वाला हो। तो ये हर इंसान की सबसे बड़ी जो आवश्यकता, उसी को कहते हैं कि कोई उसको समझ सके, उसकी दिल की गहराइयों को समझ सके, उसकी दिल की बात को समझ सके। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके। तो ऐसी ही इंसान को हम तलाशते रहते हैं और हमें हमेशा लगता है कि भाई ऐसा ना हो हमारे साथ, जब जो हमें नहीं समझ पाता है, तब हम अकेलापन का हमें एहसास होने लगता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि आप कितने भी धनी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो कोई जरूरी नहीं आप बहुत खुश हैं। उस इंसान को भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और भले ही एक इंसान गरीब हो, हम सोचें भाई गरीब है, उसको अपने दुख है, पर इसमें गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अकेलेपन का एहसास उसको वो कभी कभी कभी ना कभी जीवन में उसको वो इससे गुजर सकता है। तो संजय जी, आगे बात बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस विषय पर, क्यों ना एक और सुंदर सा आप अपने पिटारे से एक और गीत सुनाएं हमें।
0: अनुराधा जी, मैं तो पिटारा वाला तो शांता जी है, और शांता जी पिटारा में भर के लाए हैं ढेर सारे गीतों, पर कहने के तात्पर्य ये है हमारा कार्यक्रम थोड़ा लंबे है तो, और पनीर के पीछे बैठ गए हैं शीला जी, तो शीला जी क्या म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल्स थोड़ा से चला देते हैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

ने कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके, कोई ऐसा जो वह यह ना पूछे कि तुम्हारी क्या समस्या है, बल्कि केवल इतना उससे प्यार से ये कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, यही जो साथ है ना, इसी साथ हर इंसान यही साथ चाहता है एक साथी से, या जो भी उसके परिवार में है जो उसको समझ सकें और उससे कह सकें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में सबसे गहरा दुख अक्सर वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सबसे गहरा दुख वह होता है जिससे होता है जो दिखाई देता है। मतलब हम सोचते ना कि भाई किसी को कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ है, तभी उसको दुख है। नहीं, वो दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना जो अंदरूनी, जो उसके अंदर जो दुख होता है, वो सबसे बड़ी वो दुख होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, तो वही इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। और यही जो दुख होता है ना, जिसको हम अकेलापन करते हैं, यही वो जो अकेलापन की स्थिति होती है, उसी में वो सबसे इंसान दुख से पीड़ित होता है, अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा इंसान का जो होता है ना, वो दुख होता है, और वो अकेले ही उसको उसको झेल रहा होता है, कि उसको ये नहीं पता कि भाई उसको बस एक इंसान की जरूरत है जो उसको समझ सके। और वह क्या होता है कि ऐसी जो बात होती है ना, हम किसी से कह नहीं पाते हैं बहुत बार, वह दर्द जो आंखों तक आकर लौट जाता है, वह आंसू जो किसी के सामने बह नहीं पाते, वह उम्मीद जो धीरे धीरे टूटती रहती है लेकिन जिसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। शायद इसी कारण हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। तो यही जो जो सबसे बड़ा जो इंसान का जो अकेलापन आता है ना, वो इसी से आता है, वो कभी जो वो बोल नहीं सकता किसी से। तो ये बहुत बड़ा हर इंसान के जीवन में आता है कहीं ना कभी, कभी ना कभी। हम अपने संघर्षों के साथ अकेले हैं, अपनी यादों के साथ अकेले हैं, अपने डर और अपने सपनों के साथ भी अकेले हैं। देखिए, इस सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। तो जहां पर हम सोचते हैं कि भाई हम अकेले हैं हर चीज में, पर एक अलग भी उसका जब है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें आसपास, चाहे हमारे परिवार वाले हो, हमारे दोस्त जन हो, हमारे सहकर्मी, हमारे जहां आप काम करते हो, दुनिया में हर कोई, कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई बोझ लिए चल रहा है, हर मुस्कराते चेहरे के पीछे कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा दुख है। देखिए, कोई ऐसी कमी है जिसे वह शब्द नहीं दे पाता है। तो तब समझ में आता है कि हमारा अकेलापन केवल हमारा नहीं है, यह मनुष्य होने की साझा नियति है। ये हर मनुष्य को कभी ना कभी ये इस दुविधा से, इस परिस्थिति से के से गुजरना पड़ता है। तो चलें आगे और भी हम बात करेंगे, और आशा करते हैं कि देखिए अकेलापन है, पर इससे हम उभर कर क्या हम निकल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बस हम अकेले, अगर हमें ये महसूस होता अकेलापन है, क्या हम जीवन भर ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा? क्या आगे कोई इसमें कोई हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें इससे निकल सकते हैं?
चलिए पता लगाएंगे आगे, उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा एक और गीत हो जाए। संजय जी आइए एक गीत सुना जाए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं।

0: अकेलेपन के बारे में। तो देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि हम हर इंसान एक साथी की खोज में है, जो उसको उसको लगे कि जो उसे समझ सके। हम सब अपने अपने दुखों के साथ चलते हुए एक दूसरे की तलाश में हैं। हम सब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं होते हैं जो हमारे भीतर तक पहुंच सके। और देखिए, जीवन भी ना शायद इसी खोज का नाम है। जीवन भर हमारा बीत जाता है और ये हमारा नजरिया भी होता है बहुत बार कि कभी कभी जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं वो हमारे सामने है, पर हम उसको इतना उसका हम उसका महत्व नहीं समझते हैं। उस इंसान के बारे उसके बारे में या उस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं। और हम ऐसी ही कुछ अपना तलाश कर रहे होते हैं या किसी की चीज खोज रहे होते हैं जिससे कि बस हमारा अकेलापन दूर हो जाए। किसी ऐसे हाथ की खोज में हम होते हैं जो कठिन समय में हमारा हाथ थाम ले। तो हमें ये लगता है कि भाई हम ऐसा हमें भाई कोई समझने वाला हो या हमारा हाथ थाम ले ऐसी ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा जीवन में अकेलापन जो हम जिससे गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाए। किसी ऐसी आवाज की खोज में होते हैं जो टूटते हुए मन को यह विश्वास दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा। तो हर इंसान, हर मनुष्य का हृदय क्या होता है ना, वो चाहता है प्यार, चाहता है प्रेम, चाहता है। तो किसी हम ऐसे एहसास की खोज में लगे रहते हैं जहां हमें अपने आंसू छुपाने ना पड़े। जिस इंसान के साथ हम ऐसा लगता है कि जहां हमें अपना पंसा लगे, हमें किसी के साथ ऐसा अपनापन लगे कि हम अपने दुख की बात, हम अपना सब कुछ इस इंसान के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ हम बांट सके। और जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा अकेलापन भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हर मनुष्य जो है ना वो बहुत बार, देखिए ऐसी जीवन में आप जब आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आपकी जीवन शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी कट रही हो सकती है, आप खुश होते हैं तब आपको ऐसा साथी मिला है जहाँ जो आपको समझता है। पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के साथ हैं पर वो हमें समझ नहीं सकता है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है। पर कभी कभी ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, पर क्या वो, देखिए वही बात, दूसरा आपका जो साथी है उसको भी ये लग सकता है कि ये इंसान हमसे दूर रहता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके जीवन में आपका साथी हो आप उसको भी समझने की कोशिश करें। और जहां आप अपना हाथ बढ़ाएंगे दूसरे को समझने में, तो दूसरा इंसान भी अपना हाथ आपको समझने में की कोशिश में करेगा। और ऐसे ही ये बहुत बार होता है कि हम अपनी जो मानसिक रूप से हम जब ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारा दुख सुख नहीं समझता है, तो हम वो अकेलापन की हमें अनुभूति होने लगती है। पर आप इसी, देखिए हर चीज़ ये तो हमारे दिमाग से होती है, इसी दिमाग को अगर हम ये कहें, आप अगर नकारात्मक ना सोचें और उस सोच को हम बदल कर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग करें कि जो हमारे साथ परिवार जने हैं, हम उनसे थोड़ा खुलकर बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपने बच्चों के साथ हम अपना थोड़ा समय दें, अपने माता पिता हैं आपके, आपके जो जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो दोस्त हैं आपके, हो सकता है आप अकेले रहें, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अकेला जीवन व्यतीत करने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, अकेलापन का महसूस करें, आप लोगों से दोस्ती करें, अपने अपने जैसे लोगों से जो आपको लगता है जो आपकी बात समझ सकते हैं, और जो आपको आप जो आपके दुखों के दुख के समय आपको सहारा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप मिले जुले हैं, आपस में परिवार में भाई बहन हो, रिश्तेदार हैं, उन सब से एक एक अच्छा सा एक माहौल बनाएं, जिससे कि जहां पर आप हंस उनके साथ दो पल बिताएं, पर हंसता हुआ जीवन जैसे कहते ना, खुश मिजाज रहकर जीवन बिताएं, तो काफी हद तक आप जब अपने दिल की बात भी कोशिश करेंगे किसी को व्यक्त करने की, तो आपको आपका मन हल्का हो लगेगा, और काफी हद तक आपको अकेलापन का की कमी आपको महसूस नहीं होगी। और ये हमें भगवान, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम अकेलापन भी महसूस करते हैं, तो हमें भगवान पूजा पाठ में सहारा लेना चाहिए है, आप ईश्वर को याद करें, अपनी सोच को सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंसान का जीवन को बदल सकती है। तो ये सब अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों से मिले जुले, अपने मन की बात अंदर दिल में ना दबाएं, अंदर ही अंदर उसको ना, जितना भी कठिन क्यों ना हो आप किसी से बात करें, कभी बहुत आपको किसी से नहीं कर सकते तो आप कोई डॉक्टर या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से बात करें, पर बात जरूर करें, अपने दिल की बात दूसरे को जरूर बताएं, इससे आपका आधा जो अंदर दिल की बात है किसी को व्यक्त करने से आपका दिल हल्का होएगा, और ये एक जो अकेलापन का जो जो होता है, आप बाहर घूमें फिरें, लोगों से मिलें, जो आपको पसंद है, आपको क्या शौक है, बाहर खाएं पिए घूमें फिरें, जो आपके शौक हैं उनको आप पूरा करिए, जो उसमें किसी को संगीत का, किसी को नृत्य का, डांस का, पेंटिंग का, बाजा बजाने का, गाना गाने का, जो आपके शौक हैं, किसी को लिखने का शौक है, और किसी को पिक्चर देखने का या कोई भी किताब पढ़ने का जो शौक है आप पूरा करिए, और जब जो शौक पूरा करेंगे तो उसमें आपको एक खुशी का एहसास होगा। तो ये अकेलापन की जो आपको जो आपका जो विचार है, इसमें ये बहुत सहायता करेगा कि आप आपकी सोच बदलने में आपको सहारा देगा, और आपकी सकारात्मक सोच जहाँ होने लगेगी तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, और खुश मिजाज आप रहने लगेंगे, आपको एक खुशी महसूस होगी। तो ये ये जो एक तरीका है, इससे इंसान अपने अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर सकता है, और ये कोशिश में रह सकता है कि अगर हम चाहें तो इससे हमें गुजरना ना पड़े। हर इंसान चाहेगा कि ऐसी स्थिति, अकेलेपन से हमें स्थिति से गुजरना पड़े ना पड़े, तो यह मुमकिन है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जीवन से अपनी नकारात्मक सोच को, नेगेटिव थिंकिंग को हटाएं, और थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना अपने जीवन में लाएं, तो हर चीज आप देखेंगे आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा, हर खुशी का आपको एहसास होने लगेगा। और मैं चाहूंगी आप सब ये कोशिश जरूर करें, खुश रहें और सबको आसपास भी सबको खुश रखें, यही मेरी कामना है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं ये आज का ये अंत करना चाहूंगी विषय। और संजय जी चलिए एक बड़ा प्यारा सा सुंदर से एक और गीत हो जाए।
1: अनुराधा जी बड़ा सुंदर संदेश आप

0: सुनने वालों, आज के विषय जो रखा गया और पितृपक्ष अंतर्गत जो संदेश को रखा गया, जिसमें काफी संदेश जो अनुराधा जी ने रखे ना शीला जी,
1: जी
0: तो इस संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें हम लोग पुरखों और अपने औदर को अंतर्गत में बातचीत किया, और यही आशा लेकर कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसे लेकर के और अपने औदरों के साथ कुछ सुनाने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ
1: इस हाँ वो जीवन में उतारना है उनको, है तनी से अपने औदर की खातिर कुछ ये दिन बिताना है भी, ले जाओ उनको बाहर और देखना कि अगर आसपास में कहीं नगिश में भी कुछ हो कि जो अपन दिन बिता सकते हैं, इतना हम लोग के दाख आक्तिफिताई तो बा खुल गया है, चारों बगल खुलल है गा है, जहाँ जहाँ उनके अच्छा लगे वहाँ ले जा करके जरूर उनके एक दिन बिता करके वो चलाया हुए अपना।
0: दोस्तों तो समय पे हमें ध्यान देते हुए हम वही गीत की ओर बढ़ने वाले हैं, और वो गीत का बोल जो लागी छूटे ना है, तो लागी छूटे ना के ओर हम बढ़ने से पहले ये क्या कहते हैं,

जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है और जो कुछ भी मैंने पाया वह आपकी मेहरबानी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए शांता खेमाई जी और श्रीमती शीला जी, बबली आसरा जी, मैं हूँ आपका सेवक संजय, और भारत से अनुराधा चंद्र जी जो अपना संदेश को रखे, यही आशा लेकर के कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुंचे होंगे। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार।

जीवन एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है दापरिस रेडियो पर अनतुलक उक्त बलैस्त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम है। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलक बदंत। भी रेडियो का काम हो डेंक आउट ऐतान फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाइश से हो या तो जरूरी खबरें हो, जो भी खबर हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ यारो कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेरेंस कंटोर यूरो अप 07-36-27 पर या तो आप तार करें अप 07-36-27 पर। जो भी रेडियो का काम हो डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio, to guzarish binti nibidan kiya ja raha hai ki aap bhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane aur roko bhi banaye, aapko to dher sare fayda hi fayda hai. Sabhi jankari iske bare mein aap tar kare Terence Kantoor Urfan maandag tot vrijdag op 07-36-22-47. Ja, te op 07-36-22-77 per. Aap bhi Fahun Hindustani Radio ka member bane aur roko bhi banaye. Isi tarah hum logo ke bare mein charcha karte rehna yaro, reklam banate rehna. Hats off to all of you aur hamare full team ki taraf se aap iske liye aap sabhi ko teh dil se dhanyawad. Wada ke mutabik lekar badhte hain hamare sharana.

Beautiful song, tornati a Persevico, the great Meshur Ganevali Zamanika, the great Tiffany Purrenji. इतने भड़कते हुए सॉन्ग के बाद आप सुनेंगे एक ब्यूटीफुल सोल सॉन्ग, बिल्कुल नया सॉन्ग है, कुछ 3 दिन हुए है निकले हुए, और गाने वाला है द वन एंड ओनली द ग्रेट सिंगर उमर वाहिद हुसैन का, बिल्कुल नया सॉन्ग है, कॉफर सॉन्ग बाय उमर, जिन्हें हम भूलना चाहे।

Beautiful mashup by Prabhat Panchu, music by Selecta Beats. From the number one gardening expert. अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं दो मशहूर गाने वाले हमारे सूरीनाम देश का, निशा मदारन और डेल प्राडो। हमारे बुजुर्गों को शायद याद होगा कि द ग्रेट इंडियन ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम सूरीनाम आईडीआर 50-60 में एक गिटार प्लेयर और बहुत ही अच्छा गाने वाला रफी साहब जी का एक गायक भी था, उसका नाम भी डेल प्राडो था। हो सकता है ये दोनों परिवार है, तो मिलके सुनते हैं तिनका तिनका, निशांत रूबेन डेल प्राडो।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनाया आप सभी को, मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का द ग्रेट निशा मदारन कॉफर्ट बाय टुगेदर विद ग्रेट सिंगर फ्रॉम सुरीनाम रूबेन डेल प्राडो। अगला बयान मुझे तुमसे प्यार है, मशहूर गायक इंडिया और हॉलैंड देश का द ग्रेट शेखर कुमार।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को। मशहूर गायक भारत देश से आया हुआ, हॉलैंड देश में काफ़ी दिनों से, फनफ 1986 से ढेर ऑर्केस्ट्रा में ये गा चुका है, महान गायक द ग्रेट शेखर कुमार। अगला बयान सुनाने को जा रहे एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंड देश का, आया तो है पाकिस्तान से इन यार 83 से सेटल हो चुका है और ये भी ढेर ऑर्केस्ट्रास में गा चुके हैं, मैस्ट्रो बॉबी जेकब का बिल्कुल नया सॉन्ग।

दरबयान जिसने सूली को तराशा होगा। महान गायक पाकिस्तान से आया हुआ हॉलैंड देश में रहता है, जबरदस्त गायक द वन एंड ओनली मैस्ट्रो बॉबी जैकब। हमारे भी प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक कहीं जा

Namaste Shay, Namaste Shay, Namaste Shay, Namo Namah. हरिओम एकदम भैया बिरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बिरबल के नाम से भी जानते हैं। रात्रि का कार्यक्रम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो। यही अशोमील लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप श्रोताओं को जरूर पसंद आएगा।

जहां प्रभु जी साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन होवे मैं हील फील लेस्टर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आपके सेवा और खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बुलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन एफएम पिन चैनल पर। आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 07 3 6 2 2 7 4 और स्टूडियो का तार का नंबर 07 3 6 2 2 7 4। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरखीत है उन्स क्वालिटी इज यू गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूल तू सिख ऑलवेज लेकर दरबाई फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम सुने जो खास करके महान अनाउंसर साथी बड़का भैया श्री दिलीप रामाधीन जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया। जिस तौर तरीके से भाई दिलीप जी सदियों से आप सभी को सेवा करते आ रहा है, ये अशमीर है फूल टीम की तरफ से कि आज का उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई दिलीप जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन एक जश्न मनाया जा रहा है, शायद आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो या तो विवाह संस्कार की तैयारियां में शायद आप लगे हो, जो भी जश्न खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ी आन पड़ा, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हील फील्स डायरेक्टर में तो सुतिवाद सी जो बीमार लाचार आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए और जिंदगी के मजे रोजाना जरूर लेते रहना भाई, और थोड़ा बहुत तो हम लोग के बारे में जरूर बातें शातें भी करते रहना। फन हार्ट बीटर का आप कामयाब हुए हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से तय दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और अगर नहीं हुए हो बंधु तो चिंता के कोई बात नहीं है ना, दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ उतरव जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो देखना कामयाबी कैसे जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को चूमेंगे। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, नोइत ऑफ हेवन है वो तो खिलेरते हैं। देश में प्रवेश हुए तो हमारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम फेन फकांसी ब्लाइव फ्लाइस तरनार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो यू गॉन लाइक इट। और अगर आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो हमारे फुल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ यात्रा। तमाम लोग सुनते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को फेन फकांसी एड्रेस इंटरनेट के लहरों द्वारा या तो द प्लस के लहरों द्वारा, तो आप भी सुनिए ऑफ यू लैपटॉप टैबलेट ऑफ स्मार्टफोन सो बेंटी फॉन ऑल्स ऑफ द होस्ट ऑफ यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली द वन एंड ओनली देन हाक शेर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस।
प्यारे प्यारी श्रोताओं, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी। क्या आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथ ही छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं यारो कि हैप टू नास्टा ऑफ द लीफ है, कंधे से कंधे मिलाकर लगाकर भिड़ाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे कुछ नगमे महान संगीतकार द ग्रेट एक्टर सिंगर प्रोड्यूसर एंड खास करके वन ऑफ द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अलर्तेदन मैस्त्रो मदन मोहन जी के कुछ बनाए हुए नगमे लेकर आया हूँ। और उसके बाद आप नगमे सुनेंगे सिर्फ जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 11:30 बजे रात्रि तक चलेगा। तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मज़े लेते रहना, और हमेशा की तरह मैं तो यही कहता हूँ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोग के प्रोग्राम सुनते रहते हैं। रवि साहब

फ्रॉम द मूवी देख कबीरा रोया तू प्यार करे या ठुकराए और मेरा बिना रोए मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन कोहली। अगला बयान एक बार फिर एक जबरदस्त कंपोजिंग ये महान फनकार का एड फिल्म हकीकत और इस बार सुरक बादशाह रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में महान लेखक कैफी आजमी का लिखा हुआ सुंदर बयान मस्ती में छेड़ के

शेर दे, क्या बात है। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब जी के मधुर आवास में फ्रॉम द मूवी हकीकत, मदन मोहन जी के मधुर संगीत पर। अगला बयान यूना शर्मा, फैला दे। एक मजेदार सॉन्ग और एक सैड सॉन्ग दोनों कैसे मिलाया है ये महान संगीतकार, मिल के सुनते हैं और दो मधुर आवाजों में हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का संगीतकार का बादशाह और शहंशाह, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट एवर ग्रीन किशोर दा और पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब, द किंग ऑफ मेलोडी, मदन मोहन के साज पर फ्रॉम द सुपर ट्रेलर मूवी परवाना।

beautiful song, wonderful song from the movie Parwana. Yuna Sharma aur Hasne Walo, do gaane kitni khubi ke saath ye mahan sangeetkar ne sajaya. A masterpiece of composing by Maestro Madan Mohan. Kishore Da aur Rafi Sahab ji ki awaaz mein iti sundar bayan aap shrotaon ne suna. अगला बयान एक अति सुंदर मजेदार सॉन्ग है, ऐ हज़ीनो फ्रॉम द मजेदार मूवी चाचा जिंदाबाद uit 1959. और क्या स्टाइल है कंपोजिंग का मास्टर मदन मोहन जी का, ये नगमा में आप जरूर सुनेंगे. ऐ हज़ीनो नाज़नीनो, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टर मदन मोहन एंड वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग किशोर दाजी का. मिलके सुनते ये.

आज मुझे जल जाने भी दो, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हेलास इन रिलीज्ड इन एन फिल्म वेल uitgebracht स्पेशल फॉर ons. मदन मोहन जी के साथ पर आप सुना हसीनों का पुजारी किशोर दा. तो आज का जो स्पेशल मदन मोहन जी का आप सुन रहे हैं, एक आखिरी बयान सुनेंगे आज द फिल्म साहेब बहादुर. एक बार फिर हसीनों का पुजारी द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सिंगर. क्या नहीं थे किशोर दा संपूर्ण कलाकार, लता जी ने अपने इंटरव्यू में कभी कहा. अ ग्रेट सॉन्ग राही था मैं आवारा, अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टर मदन मोहन. ब्यूटीफुल सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण के कलमों से लिखा हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: उसके पीछे कहाँ जाओगे?
1: वो हरे लिबास वाली लड़की कहाँ गई?
0: उधर
2: ब्यूटीफुल सॉन्ग रही था मैं आवारा फ्रॉम द मूवी साहेब बहादुर 1980 मदन मोहन जी के साथ पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ अति सुंदर बयान और सुना दिया आप सभी को हसीनों का पुजारी द ग्रेट किशोर दास जी ने। तुम्हारी प्रिपरेशन तमें तक था आज का स्पेशल मैस्त्रो मदन मोहन जी का संगीतकार का दास्तान नामक कार्यक्रम में जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का रेडियो स्टेशन है, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं, यारों कहीं जाना मत।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा अगर यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जो गीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलेला जहाँ देखिए उसे फंसे है ओके मिथुन भगा ले गए रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

यार रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 66 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं, ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, happy station Fahorn Hindustan Radio, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा। तो एस डी बर्मन का सॉन्ग है, रजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार रजेश खन्ना, उन दोनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से आप फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था, सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्ट्रेस भी थी उन दिनों में। रजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था।

me.

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, ये है पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया। जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा, जाओ किशोरदा से बातचीत करो, कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया, जाओ इन्हें राफी साहब के दो दे। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया, तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल जैसे तो चाहता है एंगल तुई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्यों कि हमको, क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा दोस्तों, ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया, जब तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को, लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा, तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं दूसर एक्ट्रेस को ले लेना तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज़ को नहीं बदलूँगा। तो जाकर रजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और रजेश खन्ना और मुमताज़ इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया, और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज़ के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

राजेश खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा का सॉन्ग अभी आपने किशोरदा की आवाज़ में सुना। हर एक काम जो आपको रेडियो को शेयर कराना है, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। 0 से 5 तक 3 से 5 2 8 फिर 0 पर आपको तार करना है।

लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना फाह हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों, राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म चौनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

चाहे झुठाई सही फिर भी प्यार कीजिए, जिसका मुझे था इंतजार। फिल्म दोन का सॉन्ग है जिसमें अमिताभ और सिन्नत अमन ने काम किया। दोस्तों फिल्म जिंदगी जिंदगी, अपने पहले फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख कर्ज में डूबे हुए प्रोड्यूसर निर्मल ईरानी को सिन्नत अमन और अमिताभ बच्चन और चंद्र भारत ये सभी ने एक नई फिल्म बनाने को साथ देने का मौका दिया। और कहानी इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लेंगे, तो ये तीनों ने कहा कि ये कोई पैसा नहीं लेंगे अगर ईरानी जी एक नई फिल्म तैयार करेगा। अपने दोस्तों के सलाह पे निर्मल जी ने फिल्म बनाने के तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन ये दोनों ने कहा कि फिल्म में हम लोग काम करेंगे और एक चीज पैसा नहीं लेंगे। तो उसी समय में सालिम और जीवत ये दोनों के पास एक कहानी था, एक फिल्म था जिसने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहानी कुछ दूसर कहानी नहीं था, ये था हिट फिल्म डॉन। तो ये फिल्म ईरानी जी ने ले लिया और ये फिल्म जोर जोर से तला दोस्तों, और उसी साल का तीसरा हिट फिल्म निकला। ये फिल्म दोन जो था ये उस साल का तीसरी हिट फिल्म मिला और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोड्यूसर कितना खुश होगा उस समय पर अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन दोनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये फिल्म का गीत जो मैं पेश करता हूँ, इस फिल्म तैयार हुआ है।

0: 1FM.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप दायर कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536322347 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.
2: Fahun Hindustani Radio, hè?

द मैरी मैन विद बिग बाम्बू, आपको याद है दोस्तों, बीते हुए दिनों में सुनाम जिसमें जब कैरमस लगता था करम कंपैक पर, तो वहाँ लोग जाकर रे में खड़ा होकर टिकट खरीदते थे। सुंदर पोपो आते थे, त्रिनिदाद टोबैगो से आते थे गवैया, और ये गीत हमेशा कैरमस पे गाया जाता था। द बिग बाम्बू हम सब मिलकर सुनेंगे।

बिग बाम्बू द मैरी मैन की आवाज में भी आपने सुना, तो सबकी बार हम चला जाते हैं सुरनाम देश, और सुरनाम देश के कौन गोया है, मिस्टर रोमियो दंग कमला कॉम लेट वी गो।

आशनी माता दिन नजर लागे तेरे बंगले पर। दोस्तों हमाम स्टोरीज ब्रदर लिव्ड, क्या फरमाएंगे खुद सुनिए।

जाने सांप मारे गए वकील लाठी न टूटे इस आसान तो ओके ब्रेक वन

चाहे ऐसा न हो कि लाठी टूट जाए और सांप न मरे तो क्या होगा दोस्तों, सांप आपको लपेट लेंगे। नो मर्सी चटनी मैच

अभी आप सुन रहे थे बोले चूड़िया बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से हमने पेश किए हैं। जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर खास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो from the movie कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

खा के कहो, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ? नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन चुके होंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार तेरे आने से आए, तेरे जाने से जाए। अक्का याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी रन से आप सुनेंगे।

जाने से आए तेरे जाने से जाए, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

0: सुन रहे थे बर्दाश्त नहीं कर सकता के और सुनिधि चौहान आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमरा से हमने पेश किए हैं दर्शन द वंडर कार इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ लाला रे
1: हे यू गाइस लिसन टू मी बेबी से ओ ला ला ला

From the movie Darshan, The Wonder Car, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं ऊ ला ला रे के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल कह रहा है, From the movie दिल कह रहा है से हम पेश करते हैं और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे दिल कह रहा है। ओ जाना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से हम पेश करते हैं।

उदित नारायण अल का यज्ञिक के और कमल खान आपको सुनाने वाले थे। चलिए हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मौजा ही मौजा।

0: बच्चों, तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं। इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नज़र में पकड़ लिया था, है कि नहीं?
1: जी दादी।
0: देखा वही सच निकला कि नहीं?
2: जी दादी।
0: अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफी होती है ये पहचानने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे मौजा ही मौजा, और मौजा ही मौजा के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी धूम 2 से, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते क्रेजी किया रे।

शान प्रिया नीरज और शेषनायन आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया दिल दी नजर। प्रिंस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तेरे लिए। अतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

अतीफ असलम और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए फ्रॉम द मूवी प्रिंस से हमने पेश किए हैं। बिल्लू है फिल्म का नाम, सुखविंदर सिंह और सुनीरी चौहान प्रोग्राम में आ रहे हैं मर जानी।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी, और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की

चार दिन की ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए। अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका राम सुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

फनबैताली और अपवादिका राम सुकुल आपको सुनाने वाले थे। मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा, धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका राम सुकुल के साथ में। मेरी सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। देवेंद्र सिंह शिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह शिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामजतन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

काश भी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

फिल्म हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

खिलते फूलो जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम हो ना कोई बेबसी हो, सलामत रहे ज़िंदगी का यह सफ़र, जहां आप रहें वहां बस खुशी ही खुशी हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने हमें क्यों आते हैं और सपनों का मतलब क्या है।

0: आज आपको जिस विषय के बारे में बताऊंगी उसका नाम है शकुन विचार। शकुन यानी जो शगुन भी कहते हैं, शकुन भी कहते हैं, और उसका शुभ लाभ भी है और अशुभ लाभ भी है। शकुन विचार अर्थ, वास्तव में होरा गणित शकुन का मिश्रित रूप ही संहिता शास्त्र है। कालांतर में संहिता में से दो भेद और बताए गए, शकुन और प्रश्न। शकुन का फल विश्वास करने पर ही मिल सकता है। जीव ने पूर्ण जन्म में जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं, गमन के समय पशु पक्षी उस जीवन के कर्म के पाप को प्रकाशित करते हैं, यही शकुन है। ऐसा नहीं है कि शकुन शास्त्र केवल यात्रा काल तक ही सीमित है, शकुन के अनेक आयाम हैं। घर में भी शकुन हो सकते हैं और ग्राम में भी शकुन हो सकते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधे एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का हर जीव प्रकृति की विचित्रता और विशेषता लिए हुए है। परंतु प्राचीन शास्त्रकारों ने काली चिड़िया, कुत्ता, कौवा, गिदड़ी इन पांचों को शकुन शास्त्र में रत्न की संख्या दी गई है, और उन्होंने इन पांचों के सरस्वती, यज्ञ, गरुड़, चंडी और शिवदूती का अधिष्ठात देवता बतलाया गया है। शकुन उस परिणाम का सूचक है जो मनुष्य को निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है। शकुन मनुष्य के लिए देवीय प्रेरणा है जो शुभाशुभ फल के बीज के रूप में प्रस्फुटित होती है। यथार्थ में शकुन शब्द का अर्थ नामकरण पक्षी को अक्षय मानकर ही हुआ है। कुछ आकस्मिक घटनाओं को जो किसी शुभाशुभ घटना की घातक हैं उन्हें ही शकुन कहते हैं। सुनने वालों, ये मैंने आपको शकुन का अर्थ बतलाया है।
1: पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये सुरीनाम के महान गायक कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। अब शकुन हो तो क्या करें, यात्रा करने वाले व्यक्ति को यदि गमन करते समय कोई अपशकुन हो तो लौटकर हाथ पैर धोकर जल का आचमन करके किसी पीपल, बड़, गुलर अथवा आम के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और प्राणायाम करते हुए अपने ईश देवता का मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यदि दूसरी बार भी विपरीत शकुन हो तो वापस आकर किसी दूध वाले पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम करते हुए ईश देवता का मंत्र जपना चाहिए और पूर्ण यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि तीसरी बार भी अनिश्चकुन दृष्टि गोचर हो तो उस दिन के लिए यात्रा का त्याग कर घर लौट जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से घर से निकलते ही कोई शकुन होता है तो शीघ्र ही अपने स्वभाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। गमन करते समय जो शकुन होते हैं, यदि प्रवेश के समय भी वही शकुन हो तो उसके बाद दूसरी बार गमन करते समय भी वही शकुन हो तो बिना विश्राम के ही बहुत शीघ्र बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इसके विपरीत गमन करते समय शुभ और प्रवेश करते समय अशुभ शकुन हो तो दूसरी बार गमन करते समय शुभ शकुन भी कठिनाई से सफलता देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। शगुन भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ अशुकुन और अशुभ शकुन। अब मैं आपको पहले शुभ शकुन के बारे में बतलाऊंगी सुनने वालों। जिस प्रकार अशुभ शकुनों से हानि, असफलता, अधिपतन आदि की संभावना समझी जाती है, उसी प्रकार शुभ शकुनों के विषय में लाभ, सफलता, सौभाग्यवर्धन आदि माना जाता है। कुछ शुभ शकुन तुरद्यानु हसदा हुसन मिले इस्तो की शकुन चंगेरा है। इसका मतलब है सुनने वालों, अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई हंसता हुआ व्यक्ति मिल जाए और इससे अच्छा शगुन और क्या होगा। सौभाग्य चिन्ह, पुत्रवती स्त्री, सुंदर स्त्री, कुमारी, स्वस्थ बालक, बनिया, पगड़ीधारी, ब्राह्मण, ज्योतिषी, विद्वान, धोबी, शिक्षक, घोड़ा, तांगा, रथ, गाय, मोर, बैल, भेड़, हिरण, कबूतर, बकरा, सांप, फलों का ढेर, फलों से लदा ठेला गाड़ी, ईख, पुष्प, तंबूल, गीली लकड़ी, दर्पण, नवीन वस्त्र, दूध, दही, दुर्वा, मांस, शराब, घी, पताका, खाद्य सामग्री से भरा बर्तन, दीपक, नगाड़ा, वाद्य, जलयुक्त, कलश, छाता, देव प्रतिमा, शुभ वचन, गोबर, शुभ समाचार, जय घोष, वेद ध्वनि, पुस्तकें, पूजन सामग्री, खिलौने, आनंददायक सामग्री, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, खेल, वस्त्राभूषण, श्वेत माल्य सहित, मल या कूड़े आदि से भरा हुआ पात्र लिए स्त्री, गुड़ की भेली लिए हुए स्त्री या पुरुष, नारियल, छुआरे, सुपारी के लिए हुए, मिठाई, मधु, धृत पेठा लिए हुए, ध्वजा, पताका, पंखा, चावल, पका हुआ अन्न, सरसों, चंदन, शंख, मिट्टी, बिना धुएं की अग्नि, कमल, रतन, पशुओं का समूह, नवीन शाक, श्वेत वर्ण, स्वस्थ वृद्ध पुरुष, ईश्वर भगत, नई भरी हुई रजाई, रंगे हुए वस्त्र लिए या पहने हुए आदमी, सेहरा धारण किए हुए दूल्हा, सांड गर्जन करता हुआ हंसता खेलता बालक, हरे पत्तों की बंदरवाल, हरी धूप, सिंहासन, कपूर जलती हुई अगरबत्ती, मछली, वीणा, काजल, भुजा, मुर्दे के पीछे ले जाने वाला खाली कलश, राख, लकड़ी, राज, कीट, कपास, खुले हुए बाल, काली वस्तु, लोहा, वृक्ष की छाल, काला तेल, चमड़ा, दाल, विष्ठा, नमक, राजा, वैश्य, भोजन करते हुए, पूजा करते हुए, गांव के बाहर जलती लकड़ी, राख, पत्थर, सन्यासी के वस्त्र, बाल, धान की तुष, हड्डी, मांस। सुनने वालों, ये सब शुभ शकुन है। अगर ये चीज़ें यात्रा करने हम जा रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये सब शुभ शकुन माने जाते हैं।

सुनने वालों, अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे। गाना सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे शुभ है तो लाभ है तो हानि भी है, वैसे ही अगर शुभ शकुन है तो अशुभ शकुन भी है। तो गीत के बाद मैं आपको बताऊँगी अशुभ शकुन के बारे में। सुनने वालों,

सुनने वालों, जो आप लोगों ने अभी ये गीत सुना वो है सूरीनाम के प्रसिद्ध गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में। अब मैं हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, जब आपने शुभ शकुन सुने, अब थोड़े अशुभ शकुन भी हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे चोर, पागल, लपट, सन्यासी, ब्रह्मचारी, रोगी, लंगड़ा, नपुंसक, काना, भिकारी, जटाधारी, क्रोधी, गधा, ऊंट, भैंसा, रुदन की ध्वनि, गर्भवती या विधवा स्त्री, धूर्त, लकड़ी बेचने वाला, नाई, सुनार, लोहार, तेली, चमार, कुम्हार, मोची, शिकारी, अस्त्र शस्त्र, हथकड़ी, अंग फड़काना, ठोकर खाना, बर्तन का गिरना, मुंडे सिर वाला, बिल्ली, बिल्ली का रोना, कुत्ता, कुत्तों का लड़ना, कुत्तों का रोना, कुत्तों का कान फड़काना, बिल्ली का रास्ता काटना, बांझ गाय, काला सर्प, काला पान, कौवा, वानर, तेल से भरा घड़ा, तेल, छाछ, काला नमक, गुड़, झाड़ू, काली बर्तन, हंडिया, रस्सी, छींक, दुर्वचन, रुधन, कूड़ा करकट, दुर्घटना, बाल छाए रहे, बिजली कड़के, दिन में तारे टूटना, मेहतार खाली, डलिया लिए हुए, नौ स्त्रियां या तीन ब्राह्मण, दो वैश्य, एक शूद्र, कोई मनुष्य चिकने वस्त्र पहने हुए, तिलक रहित ब्राह्मण, हिजड़ा या हिजड़ी, केशवहीन, अपंग, नंगा, तेल लगाए हुए रोती स्त्री, शराबी, काला आदमी, काली माला धारण किए हुए आदमी, कपाल, कपाल में खोपड़ी, जलती चिता, कांटेदार वृक्ष, भस्म, पत्थर लाता हुआ, पत्थर पर बैठा हुआ पुरुष, गधे को छोड़कर अन्य प्राणी पर योनि से गमन करें।

सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक गीत सुनाऊंगी और गीत के तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगी शकुन किस प्रकार फल देता है।

सुनने वालों, ये जो भी आपने गीत सुना ये सुरीनाम के मशहूर गायक पंडित स्वामी प्रसाद जी की आवाज़ में था और वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत उनके गीत मशहूर हुए सुरीनाम में। और इनकी बहन श्रीमती सम्राजी लक्ष्मण जी भी सुरीनाम और हॉलैंड की जानी मानी गायिका रह चुकी हैं। उन्होंने भी बहुत सारे गीत गाए जो बहुत मशहूर हुए सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, शकुन किस प्रकार फल देता है। समूह का फल, जो लोग समूह में जा रहे होते हैं उसका विचार समूह के प्रधान व्यक्ति के अनुसार किया जाना चाहिए। शकुन निकट हो, शकुन प्रायः निकट होने पर ही फल देते हैं। बहुत दूरी पर होने वाले शकुन प्रायः फलीभूत नहीं होते। शकुन दाहिने हाथ की ओर, जो शकुन हमारे दाहिने हाथ की तरफ होने पर शुभ रहता है और हमारे दाहिनी ओर की नसा छिद्र से श्वास सूर्य स्वर चल रहा है तो शकुन का शीघ्र ही उत्तम फल मिल जाता है। इसके विपरीत बाईं ओर से स्वर चंद्र स्वर चल रहा हो तो शकुन का फल भी विपरीत मिलता है। नर शकुन, पशु पक्षियों में नर के शकुन को श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री अथवा नपुंसक होने पर मंद फल मिलता है। विभिन्न दिशाओं में बलवान शुभ, पूर्व में बलवान मोर मोदकी सिंह ध्वनि पित्रा हिरण कुकड़ा कंठ फोड़ा हाथी मुर्गा आदि। दक्षिण में बलवान क्रूर शब्द वाले पशु पक्षी जैसे कौवा रीछ कबूतर उल्लू गिदड़ी हरियल तेलगुरु सियारी पिंगला आदि। सुनने वालों, ये सब पशु पक्षियों के नाम हैं। पश्चिम में बलवान कुकुरी गाय बगुला बिलाव हंस चातक तीतर लोमड़ी खरगोश वादों का बजना कुत्ते की ध्वनि सारस आदि। उत्तर दिशा में बलवान घोड़ा चूहा कोयल नीलकंठ शंख कुटुकू बढ़िया हिरण चातक पुण्य वचन घंटा सिंह की ध्वनि आदि।

मंगल अरु इतवार दिन और शनिश्चर लेन चरकारज को मिलते हैं सूरज के दिन तीन। तीन दिन सुबह प्रातः उठते समय सूर्य का दायां स्वर चलना चाहिए। उठने से पहले अपनी दाई हथेली को 5 बार चूमकर इससे अपने दाएं अंगों को स्पर्श करके सर्वप्रथम उठने के लिए अपना दायां कदम पहले भूमि पर रख कर उठें। बाकी दिनों में चंद्र स्वर बाई हथेली तथा बाएं पांव का प्रयोग करें। यह शर्मशाली और प्रसन्न रहते रहने का एकमात्र रामबाण है। सुनने वालों, आप तो सब जानते ही होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम से ना उठें, पहले हम अपना दायां पैर आगे रखें, फिर हथेली को चूमें और फिर सारे अपने शरीर को उससे स्पर्श करें। तो ऐसे हमें उठना चाहिए, एकदम भाग कर नहीं उठना चाहिए। नीचे ऊंचे शकुन, निकट और नीचे हुए शकुन क्षेत्रफलदायी, ऊंचे और दूरी पर होने वाले शकुन विलंब से फलित होते हैं। सूखे पेड़ पर शकुन, वही पक्षी यदि सूखे पेड़ पर शकुन देता है तो अपशकुन फलदायक होता है। महल मंदिर पर शकुन, जब महल मंदिर मंगल द्रव्य अथवा किसी रमणीय स्थान पर बैठकर कोई पक्षी शकुन देता हो तो रस, दूध, फल, मधु अथवा पुष्प युक्त वृक्ष पर शकुन देता हो तो शेष फल मिलते हैं। दिन रात्रि के शकुन, दिन के शकुन अपने काल में ऊंचे स्थान पर बैठे हो, रात्रि के शकुन जल के समीप बैठे हो तो बलवान होते हैं। स्त्री से पुरुष बलवान, प्राणियों में क्रमशः नपुंसक से स्त्री और स्त्री से पुरुष बलवान होता है। गांव में वन के शकुन का होना और वन में गांव के शकुन का होना, रात्रि में दिन का शकुन होना और दिन में रात्रि के शकुन का होना गारे नहीं है। सुनने वालों, अब मैं आप लोगों के लिए गाना चलाती हूँ, आप सब गाना सुनिए।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने जो ये गीत सुना, ये गीत था सूरीनाम के मशहूर गायक श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, नदी के दूसरे किनारे पर शकुन। रति मुक्ति, रोग पीड़ित, त्रासित, झगड़ा और मांस की अभिलाषी, नदी के दूसरे किनारे बैठे पशु पक्षियों के शकुन भी घारे नहीं होते। आठ दिशाओं के 32 भेद, पूर्व और अग्नि कोण के बीच कोषाध्यक्ष, लोहार, तपस्वी, अग्नि कोण तथा दक्षिण, कारीगर, भिक्षु, नंगी स्त्री, दक्षिण तथा नेत्रस्थ, हाथी, गोप, धार्मिक लोग, नेत्र तथा पश्चिम, उधम स्त्री, प्रसिद्धा स्त्री, चोर, पश्चिम तथा वावेय, कलाल, चिड़ीमार, हिंसक जीव, वायव तथा उत्तर, विष घातक वाले तथा इंद्रजाल जानने वाले, उत्तर तथा ईशान, धनवान, ज्योतिषी, माली, ईशान तथा पूर्व, वैष्णव, चरक, बौद्ध भिक्षु, घोड़ों की रक्षा करने वाला, आठ दिशाओं में राजा, राजापुत्र, सेनापति, धनवान, जासूस, ब्राह्मण, हाथियों के समूह का स्वामी, पूर्वादि चार दिशाओं में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, पुरुष शब्दवाचक तथा स्त्री संज्ञक, बाई ओर से शुभ, गिद्धड़ी, पातकी, कलाकार, छछुंदर, चपकिया, शगरी, कोयल तथा पुरुषवाचक पक्षी, दक्षिण में शुभ, बंदर, छीक मृग, मोर, शिरकट, रोरो मृग, बाज, स्त्री संज्ञक, नाम लेना, दर्शन करना, अग्रभाग में शब्द करते शुभ, बकरा, मोर, कीर्तन, सम्मुख आना अशुभ, नेवला, नीलकंठ, गिरगिट।

जो आपने गीत सुना है ये गीत श्रीमान दयाराम जी ने और महेंद्र गुदर जी ढोल पे थे, श्रीमान महेंद्र गुदर जी हारमोनियम पे थे दयाराम भाई। और ये हॉलैंड के इतनी मशहूर जोड़ी कि सब इनको जानते हैं, जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी, एक के बिना दूसरा अधूरा था। समय बताने वाले तो बहुत हैं लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: प्रकाश लेकर आज के कार्यक्रम में पनेल के पीछे बैठे हुए शांता खेमई जी और दूसरा ओर बैठे हुए बबली आसरा जी और तीसरा ओर बैठे हुए शीला जी जो आज हम लोग के साथ पहला बार स्टूडियो में उपस्थित है। तो शीला जी आपको बहुत बहुत से हार्दिक से स्वागत किया जाता है और अभी तो और बातचीत होएगा पर शांता जी क्यों ना और एंट्री हो जाए तो हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी हाँ जरूर से। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। ये जाने पहचाने शब्द है तो जाने पहचाने भी यहाँ है। आपको हार्दिक से स्वागत है ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में और स्वीकार कीजिए यहाँ से प्यार भरी नमस्कार शांता जी का। शांता जी की
0: कुछ पुलिंग स्रीलिंग में तो हो ही जाता है ना,
1: अक्सर हो जाता है।

जब आई मुसीबत तो कोई भी साथ ना था, नज़र उठा के देखा तो सिर पे मेरे सतगुरु तेरा हाथ था। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: Oh, namaste po, Jay.
1: आप सभी लोग को मेरा नमस्कार पहुँचे, बड़ों को सबको पाए लगी, छोटों को मेरा राम राम और खुये नाफन।

0: अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया था, कवच, कुंडल, सोना, चांदी, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में भूखे क्यों रह गए? क्योंकि एक ऋण था जो उन्होंने कभी नहीं चुकाया था, और वो ऋण आपके ऊपर भी हो सकता है। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनके सामने अमृत और भोजन नहीं बल्कि सोना और हीरे थे। भूख से तड़पते कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा,
1: मैंने अपना पूरा जीवन दान में लगा दिया, कवच, कुंडल, सोना, चांदी सब दे दिया ताकि कोई भूखा ना रहे, और आज मैं स्वयं स्वर्ग में भूख से तड़प रहा हूँ। ये कैसा न्याय है देवराज?
0: देवराज इंद्र ने कहा,
1: अंगराज, ये सच है कि तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन हर मनुष्य तीन ऋण के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहले दो तुमने चुका दिए, लेकिन तीसरा यानी पितृ ऋण खाली है। तुमने अपने पितरों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया, एक बार भी उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा।
0: लेकिन कर्ण का उत्तर भी उतना ही सच था। उन्होंने कहा,
1: मैं श्राद्ध कैसे करता?

0: सकता। मैं तो सूत पुत्र बनकर जिया, मेरे माता पिता तो राधा और अधिरथ थे। मेरे वास्तविक वंश का ज्ञान मुझे मृत्यु से कुछ क्षण पहले हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं।
1: इंद्र ने कहा,
0: उचित कहा तुमने कर्ण, लेकिन तुम्हारे पितर आज भी तुमसे अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वो तृप्त नहीं होंगे, तुम्हें भी तृप्ति नहीं मिल सकती।
1: कर्ण ने अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। इंद्र ने कहा,
0: ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। जाओ अपने सभी पितरों को तृप्त करो और पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ।
1: पृथ्वी पर आकर कर्ण ने सबसे पहले अपने पिता सूर्य देव को अर्घ दिया, फिर अपनी जन्मदात्री कुंती और पालक राधा और अधिरथ का तर्पण करते हुए कहा,
0: आप सभी तृप्त हों और मेरे वे सभी पूर्वज जिन्हें मैं जानता हूँ या कभी जान ही ना पाया, आज आपका पुत्र कर्ण आपको अन्न और जल अर्पित करता है। इसे स्वीकार करें और मुझे इस ऋण से मुक्त करें।
1: इन 15 दिनों में कर्ण ने हजारों भूखों को भोजन कराया, हर एक दाना अपने पितरों को याद करके अर्पित किया। स्वर्ग लौटने पर कर्ण के सामने सोने चांदी की जगह भोजन परोसा गया और उसी क्षण उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन असल में ये भूख अन्न की नहीं थी, ये भूख कर्तव्य की थी। कर्ण को दिए गए वो 15 दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। वही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। हर साल ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं, और श्राद्ध केवल एक पूजा नहीं है, ये अपनी जड़ों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो आप इस पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं?
2: अब यही बात तो सबसे मूल्य है कि आप अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में क्या करते हैं। तो सुनने वालों, आज हमारे साथ हमारे सहयोग दे रहे श्रीमती शीला जी, और शीला जी जो हमारे सीनियर के और अनेकों स्थानों पे कितना काम करते। तो शीला जी, आपको हार्दिक से स्वागत एक बार फिर। और आप जो हमारे सीनियर तनी बचाए के बोलक पर है ना, बुढ़ पुरनिया बोलिए पुराना भाषा में, तो अपना चली,
3: अपना चली।
2: हाँ, डांट दे शांता जी,
3: सीखे क्या है?
2: पर हमारे जो औदर है ना,
3: औदर है,
2: तो औदर के लिए आप बहुत कुछ करते हैं हॉलैंड में, और उस अंतर्गत में आप ऐसा क्या है जो, क्योंकि ये बात कहे जाते हैं ना आपके मुख से मैंने सुना है, पर हम औरों के मुख से सुने हैं कि शीला जी जब पेंशन से चल जाए तब क्या होगा। जैसे इवेंट हेल भी सुंदर इवेंट सो एक्टिव बेसिक मैथ ऑन से औदरन, ऐसे कहने के तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने अभी हाल ही में एक जगह गए जहां पर हिंदुस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और शांता जी भी वहां आए थे, जॉनी भाई भी वहां थे, और हम सभी कुछ न कुछ करते हैं। कभी शांता जी जो और गीतों का और लेस देते हैं, तो कहीं जॉनी जी जो और नाटक को लिखते हैं और प्रेजेंटेट करते, तो हम लोग का जान पहचान वाले ढेर सारे हैं। पर कहने के तात्पर्य ये है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ जाते हैं जहाँ औदरन रहते हैं, दाह फॉर लाइफ आदि। तो उस अंतर्गत में आपके हम लोग को कुछ सुनाइए।
3: वहाँ जो आते हैं ना, वो अपने जो साथ है सभी लोग अपने लेफ्टाइट के लेफ्टाइट्सगनोते हैं सभी लोग ना, जो घर पर रहते हैं और सेल्फस्टैंडिंग रहते हैं, आते वहाँ पर अपना दिन बिता करके दाह उपफंग में दाह एक्टिविटीज करके अपना घर फिर चला जाता है सभी लोग। उन लोग के बहुत ज़रूरी है कि घर पर वो खाना ना पका सकते हैं, वहाँ सब घर पर अकेला भी ना रह सकते हैं दिन भर, इसलिए वहाँ पर आते हैं सभी लोग कि आ करके अपना जितना हम लोग के वहाँ एक्टिविटीज बा, हम लोग एक्टिविटीज करेला सबके साथ हो करके वहाँ, तब सब कोई शाम को घर पर चला जाता है। वहाँ उन लोग के दिन ऐसे बहल जाता है।
2: कहने के तात्पर्य यह है कि हम जब हमारा पेंशन हो गया, हमें बुढ़ापा भी थोड़ा आ गया, फिर भी कहना नहीं चाहता हूँ शांता जी, पर कह देता हूँ, पर हम लोग के लिए दाख बस्ते ही देंगे हॉलैंड में ये सब चीज़ बनाया गया है। और ये दख बस्तेदिंग जो है, देखो अनेकों अनेकों शहरों में होते हैं, हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं चौताल सुनाने को, तो कहीं जाते हैं रामलीला खेलने को, और सब जगह हम लोग देखते हैं कि हाँ सभी जगह ये सब चीज़ें होते, पर इवेंट इन फंड मऊत और फंडित जो आजकल ऐसे हम लोग के, हम लोग सौभाग्य कि आप ऐसा चीज़ बना रहे हम लोग के लिए, और हेल भी सुंदर दातुदात दूत। शांता जी इस पे आप क्या, क्योंकि आप भी कभी काल के कभी योखा तो कभी संगलेस इधर उधर और उधर के साथ बेसी रहते हैं, उस पे आपके क्या ख्याल?
4: आपने एक शब्द इस्तेमाल की है बुढ़ापा और गरीबी। बुढ़ापा मेरे अनुभव से बुढ़ापा और गरीबी लोग, मैं कहती हूँ उसको कहते हैं जो आप जब आप क्या आप जो मोबाइल नहीं रहोगे तो आप बूढ़ा हैगा और गरीब है। जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं, जब तक चाहे 80 साल को हो या 90 साल को या 100 साल को, जब तक आप अपने आप में कुछ कर सकते हो तो आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, आप बूढ़ा ना है और आप गरीब ना है, ऐसा हम देखें। तो उम्मीद जा हैगा और जहाँ पे हमारा शिला जी, हमारे शिला जी वहाँ पर सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे बुजुर्ग जो आते हैं वहाँ पे भी ढेर है जो मोबाइल है।
3: सही बात,
4: हाँ मोबाइल है, पर घर पे अकेले रहने के कारण और इंसान है के कारण
3: अकेलापन जो है, अकेलापन बहुत अपने के महसूस करता है, इसलिए वहाँ आते हैं।
4: हाँ।
3: और वहाँ पर तो अपना अपने लाइफ टाइप के साथ जो खनोते हैं सबके साथ मिल के रहता है, तो वो लोग बहुत कुछ बातचीत करता है अपने में,
4: सब पुराना यादें जो
3: पुराना यादें सब आते हैं।
4: और आप लोग जो निमंत्रण भी देते हैं संगीत वाले लोग के, तो वो भी आकर वहाँ पर संगीत के अनुसार भी जो पुराना गाना गाते हैं ना, तो वो सब मैं भी देखी ना कि कितने बैठ के रोते हैं। हाँ, और ऐसे है कितने तो हम देखे जो थोड़ा से कमज़ोर हो गए बोलने में, तो वो उसका शब्द जो ना बोल पाए तो उसका आँख बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी है, देखो ना, मैं कहती हूँ भी कि अपना अपना जब तक हाथ गोड़ चले ना, अच्छा कार्य करो रे मेरे मालिक।
3: नहीं जानते मैं लोग हम लोगों कहाँ पहुँचो कोई ना।
4: हाँ, जैसे आप करते हैं वहाँ पे सेवा और उफांद खदरा खुद दी औद्र या एक सी एक बेनो को पार्केर हकोम एंड इकोले खास ओ एंड एहमेद
3: samen doen met z'n allen. Iedereen doet zijn eigen best, yeah. Hè, op een eigen manier. En doen we toch hebben we zo goed deze karpaila seva ooit hebben nodig. Deze was op keer. Doen ze roerie was op keer liever. Wanneer hebben we dit eigen.
4: Mijn gehaal is, Sila ji, aapke sanskaar bhi isne hai.
3: Ji, seva karne ke liye.
4: हाँ, घर से ऐसे सीख के आए तब जो वही कहते भी ना, जो आपके थैली में है वही आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दे पाओगे। तो संस्कार आप भी अपने घर से अपने आप, धन्य हो आपके माता पिता भी,
3: धन्यवाद है। और वो ऊपर वाली भी देते ना, जो हम लोग के बुजुर्गो है वो की जो सेवा करिए, उन लोग के आशीर्वाद से और शक्ति मिले और ताकत मिले उन लोग के सेवा करने के लिए और हिम्मत मिले है।
4: बात सही है,
3: प्रेम से करियो सब कुछ। हाँ। वो प्रेम के काम है ना, वो अपने दिल से उनके करे के, अपने दिल से कुछ करियो तो उनके फल जरूर मिले।
4: बात सही है एकदम से। बबली जी,
2: बबली जी भी कुछ कहने वाले
4: थे।
2: बबली जी, भारत में कैसे होता है ऐसे, ऐसा ऐसा इंस्टांसिस है, ऐसा ऐसा दख फॉर लाइफ आदि होते है या नहीं होते है?
5: आज से 30-40 साल पहले नहीं था, अब वहाँ भी ऐसी चीज वृद्धाश्रम कहते हैं,
4: वृद्धाश्रम,
5: तो वहाँ पर वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम है और उसी के हिसाब से अब बच्चे भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को। जब वृद्धाश्रम नहीं थे तो कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता था, सब एक मिलजुल के रहते थे, और उसी के कारण ज़बरदस्ती कहीं अपने माँ बाप को छोड़ आते, बेचारे रोते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा। कहीं तो पैसे के लालच में पैसा ले लेते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, कई अपनी पत्नी की बात सुन के या कुछ और घरेलू होते हैं झगड़े वगैरह उससे छोड़ आते हैं। वो बेचारे रोते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे एक दिन मैंने कपिल शर्मा कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी
4: जी,
5: तो उसमें ऐसे जैसे शीला जी दीदी चलाते हैं अपना, वैसे वो भी चलाते हैं वृद्धाश्रम। तो औरत बता रही थी जो वहाँ काम करती है, कहती बेचारे इतने रोते हैं बेचारे माँ बाप की कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है लेकिन भारत में ऐसे नहीं है, भारत में वृद्धाश्रम दूसरे तरीके से है। तो वो पता नहीं उसके वृद्धाश्रम में काफ़ी लोग थे वो बता रहे थे, तो करोड़पति खेलने आए ना, जो खेल रहे थे वो जो पैसे जीतेंगे वो वहाँ वृद्धाश्रम में दान देंगे। हाँ जी हाँ। और कितने मैं करोड़पति में देखती हूँ कितने लोग ऐसे आते हैं जो पैसे जीतते हैं वो ऐसे वृद्धाश्रम में देते हैं, कोई अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में देते हैं ऐसे। हाँ जी,
2: तो कहने के तात्पर्य ये है कि हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी जो आज है उनकर और सेवा करने का मौका मिले तो हम जीते जी उसे खूब सेवा करें ना, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
4: बिल्कुल ऐसा।
2: और बाद में एक ना एक दिन तो हम सबके जाना है, तो बाद में जब वो नहीं रहेगा तो क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और हम आज का विषय जो है पितृपक्ष, पितृपक्ष अभी अनुराधा जी कुछ सुनाने वाले हैं दिल्ली से, जो इस समय कार्यक्रम में और सुन रहे हैं और हम सबको लिए और तैयार कर रहे हैं कि कुछ सुनाने के लिए, और मास्टर जी जो उत्तराचल से हम सबको संदेश सुनाने वाला है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए कि शायद बचपन में शिला जी हम लोगों ने पितृपक्ष सुनते थे ना सूरीनाम में, और सुनते थे पर उस समय कोई कोई लोग कुछ ना कुछ करते थे और ज़्यादा तादाद में लोग थोड़ा डरते थे कि अरे एक बार कर देंगे तो का अब हर बार करना पड़ेगा, कैसे लड़कों करेगा, और इस प्रकार के बातें होते थे। हमें भी अभी तक ख्याल है उसके उन बातों के, फिर भी अब देखा जाए कि जब जब आपका सत्संग में जा रहे हैं, आप संदेश को सुन रहे हैं, उसमें और आगे बढ़ते गए। अब देखा जाए कि पितृपक्ष जो होते हैं साल में दूसरा नवरात्रि से पहले, वो और गणेश चतुर्थी मनाए लगने हैं, और होलांत में गणेश भगवान भी आ गए हैं ये चतुर्थी फेस्टिवल के अंतर्गत, क्योंकि लगभग 195 देशों है और कहते हैं जहां हवा है और जहां पानी है वहां हिंदुस्तानी भी है, ऐसा है शांता जी की ना?
4: हाँ, एकदम।
2: जहां जहां हिंदुस्तानी है वहां वहां हमारे और जो त्योहारे हैं त्योहारे भी लेकर हम गए हैं और त्योहारों को मनाने लगा। और खास करके सबसे मूल्य है कि हमने देखा कि होलांत में जब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के अंदर, तो अब यहाँ भारत में जो फेस्टिवल दोन हो जाता है तो व्हाट्सएप बरेख बन के निकल जाता है कि देखिए भाई गणेश जी का और मूर्ति किस प्रकार से फेंका हुआ है, ऐसे हर साल होता है। नवरात्रि के बाद दूसरा फिल्म बनाते, ऐसे हर साल बनाते। पर कहने के तात्पर्य ये मैं कहना चाहता हूं कि होलांत में ऐसा मूर्ति बनाया गया मिट्टी से जो जा करके जल में छोड़ने से वो बिल्कुल गल हो जाता है। तो धन्यवाद है कि हमारे बच्चों अच्छा उनसे केंद्र दीदा माँ कन। और ऐसा अब सी तो मैंने देखा कि गणेश जी का मूर्ति जो और उसके बगल में बैठे हुए मूस उसमें पूंछ भी बना लिया पूंछ के साथ। तो तरक्की हो रहा है हमारे त्योहारों में, और खास करके जब पितृपक्ष है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंतर्गत में। हम पितृपक्ष में बबली जी आप बताइए आप क्या करते हो पितृपक्ष में।
5: पहले तो मैं ये बताती हूँ, जब हम भारत में थे तो छोटे थे तो हमारी दादी ने यानी आजी ने बोलना कि आज तुम जब स्कूल से आओगे तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा। हम बच्चे थे, हमने कहा बहुत खुश होते कि हाँ आज खाने के लिए खीर बनेगी और वो अरे सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जब हम स्कूल से आना तो कहना बड़ी भूख लगी है, तो देखना हमारी बड़की भाई और मेरी मम्मी ने और दादी, तो हमारे इतना काम नहीं करते थे वो बेचारे, उन्हें घुटनों का दर्द था तो बैठे बैठे सब कुछ समझाते थे। तो देखना रोटी चावल दाल सब्जी खीर सब कुछ बना है, तो हलवा भी होता था मोहन भोग हाँ। तो अरे वो मनते जाते थे अपना जो कार्य करना है, हमारे दादा करते थे। तो उसके बाद जब हमने खाना खाया बड़ा स्वादिष्ट है ये, तो उसमें एक प्रसाद आ जाता है। तो जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं भगवान का नाम लो तो वो भोग बन जाता है। तो बड़े स्वाद से हमने खाना करना, तो कहना किस लिए है, तो उन्होंने बताना जो तुम्हारे आजा नहीं है तो आज उनके लिए श्राद्ध किया है, तो पंडित को दान देना गुरुद्वारे में दान देना, तो ऐसे हमारी आजी ने बताना हमको। तो फिर हम बड़े हुए तो फिर तो अपने से अरे आ जाता है कि कैसा त्यौहार, त्यौहार या ये भी एक तरह से ये पितरों का त्यौहार है,
4: पितरों का त्यौहार है।
5: हाँ जी, तो धीरे धीरे फिर सब पता चलने लग गया कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे करते हैं।
4: दिन पर दिन ऊपर ऊपर सब जोड़ देवे है और दिखावे है बतावे है कि कौन जी है कैसे पितर ओके चाहे सेवा करे के। हमारे देखे में जीते जी सेवा कर ले रहे भगवान, हाँ जीते जी में जितना मिले बुजुर्ग अपने आप को अपने जो सामने ऐसे हम लोग बैठे एक दूसरे के सेवा कर ले उसमें जितना सुकून मिले है। तो जो पितर के से पूजे से आज है इसे चले पितर पक तो इसमें जब भी पूजा करिए एक्स्ट्रा भी पूजा करिए तो दिल में इतना सुकून मिले है बताइए। और ये पितर के जीते जी जे अपन माता पिता के दुख देवे है और वो माता पिता जो गुजर जाए दिन लाइफ में ना रहे शरीर में ना रहे तो उस पीढ़ी में दुख आवे है बाधा आवे है। बाधा है जैसे कि पंडित जी बताइए कि घर में जैसे बेटा बेटी है तो उनका ब्याह भी ना हो पावे रुकावट रहे ऐसे ऐसे बहुत से तरक्की ना हो पावे तो मंगे कहूँ काम खोजे वो पे बाधा होवे और जो ये भी काम करे दिखे दो तीन रोज में छूट गया आपके कॉलेज का नाम हो ये ऐसे कुछ ना कुछ बाधा रहे है। तो ओकर खातिर भी मौका मिले है जैसे आज साल में
6: आने के लिए हाँ, काम करके सब
4: जी जैसे इस आयत पे है पितृपक्ष जो चल रहा है तो यहाँ पे भी सुधार कर सके है और तो कि पितर लोग के खातिर पूजा कर दे पानी दे दे श्राद्ध कर दे उस सब के भी एगो तरीका हो पंडित से जरूर से पूछो पंडित ना है तो गूगल महाराज से भी पूछ लो देख लो उसमें तो भी बतावे कैसे कैसे ढंग से करे
6: सब तरीका से सब कुछ सीख सकते हैं ना हाँ। सत्संग में जाओ जितना सत्संग में सीखने मिलता है ना और मंदिरों में तो सब कुछ भी उसे भी कर सके है
4: यार। जी शीला जी मेरे ख्याल से आज के इस समय पे जैसे ये चल रहा है तो मंदिर में भी मौका हैगा श्राद्ध के जल चढ़ावे ना
2: तिरांजलि अनेक अनेक मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम रखा जाता है हाँ। और पर आप अपने घर से भी कर सकते हैं तिरांजलि दे सकते हैं और उस अंतर्गत में अभी कुछ और हम लोग सुनेंगे क्योंकि अच्छा। मास्टर जी जो भारत से अपना संदेश रखने वाला है
4: हाँ।
2: तो अभी क्यों ना शांता जी
4: ने एक बार क्योंकि हमने देखे एक मंदिर 10 साल पहले के बात बता रही हूँ वो मंदिर भी जब ऐसा दिन आया था ना पितृपक तो वो भी श्राद्ध करा रहे थे जो भी चाहे अपने दिल से जाकर वो कुसा पकड़ाते थे और बताते कि ऐसे करो ऐसे धर अंजलि में वो जल ले वो जिसमें दूध और काला तिल है और सब ऐसे तो ऐसे दाएं हाथ ऐसे हाँ ऐसे क्योंकि हाथ जो है ना चार कोना है ना, मिडल फिंगर के है, दोई मेगा पिंक है एंड हैप्पी दी हैंड पालम सो, और चार कैची से चार देवता के समर्पण करल जा है। दोई कैची से वो पितर और यहाँ जो मिडल फिंगर है वो देवता और
2: अब ये तो शांता जी तो बड़ा चक्कर में छोड़ दिया हम लोग को,
4: पर
2: ये भी है इसका सबका अपना अपना मतलब है शांता जी।
4: ऋषि यहाँ पे है गा जाते सेल्फ, जैसे पंचामृत लेवे दैट इज फॉर योर सेल्फ।
2: कहने के तात्पर्य है शांता जी, तीन ऋण हम लोग का होता है ना। वैसे तो मैं एक गाना चलवाना था पर फिर भी बातें बात में समय निकल जा रहा है और तीन ऋण हमें उस पर ध्यान देना है। एक है जो ऋषि ऋण, जिनसे हम लोग सीख पाते हैं, ऋषि द्वारा जो लिखे गए सब पुस्तक आदि ग्रंथों जिसे हम सीख सके। एक है जो पितृ ऋण और एक है जो देव ऋण। तो ये तीनों ऋणों हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है। और ये इनके बारे में हम कहाँ पर सत्संग में जाए मंदिरों आदि में तो हम वहाँ पर सुन पाएंगे। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी, और फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपने सुने और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शांता खेमाई जी, जो पनील के पीछे से कुछ ना कुछ गाना खोज खोज करके रख देते हैं। कहते हैं कि शांता चलते तो पिटारा ले करके, और कौन कौन सा गीत उसमें है ये हम सबको नहीं पता होते, पर फिर भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ हर बार आते हैं। शीला जी, आप हमें बताइए ये कि आप औदरन के साथ वहाँ पर और कार्यक्रम करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ औदर जो हमारे पुराने गीतों हैं, जबकि ना कि सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्योंकि पहले होते थे ना, पहले जब शादी होवे तो चाहे जोन हुए, गरीबताई हुए या अमीर है या गरीब है, फरमाइश तो दुई हफ्ता बजी,
1: वो सही बात,
0: तो उसके बारे में थोड़ा सा सुनाइए।
1: देखो जब सब बैठते हैं ना तो हम लोग पुराना गाना, पहले के पुराना गाना हम लोग धरेला यार सस्तर साठ है, तो जब उस समय के गाना हम लोग धरेला तो उन लोग के इतना उन लोग के सब यादें आते हैं ऊपर कि उन लोग अपने में इतना बात करते हैं कि ये तो मेरे मेरे जब मेरे शादी हुआ था ये तब गाना बजा था, वो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग वो पहले पुराना के सब जितना उन लोग के यादें बा सब ऊपर आते हैं, तो उन अपने में गुपचुप करते बात करते है गाना, कोई कोई के हंसा देता है, कोई के रोवा देता है, आंसू निकल आते हैं भी
2: जी।
1: वो भी देख करके बहुत दुख लगता है गा भी, तो भी सोचता हूँ जो मन में है उन लोगों के वो निकाल देते हैं अपना।
2: हाँ ऐसे होता ना विशिला जी कि शरीर से कमजोर है बाकी दिमाग अबे जवान है,
1: चलते है दिमाग बहुत, हमें
2: दिमाग जवान है,
1: हमें बहुत गर्व है सबके ऊपर, कि वो लोग आते हैं उन लोग ना उन लोग के उम्र ना देखियो, जो उम्र देखियो तो सोचियो कितना उन लोग कर लेता है, तो मैं भी कभी कभी चक्कर काट लेता है अपने के खातिर, सोचता हूँ अच्छा चलो देखो ये तो भी हो गया ना, वो भी बहुत बहुत गर्व है सबके ऊपर कि भी आते हैं सभी लोग वहाँ अपना दिन बिताते हैं, बहुत अच्छे हैगा कि यहाँ हॉलैंड में ये सब
0: फैसिलिटी है
1: वो सब मोखलक है कि वो लोग आकर के दिन बिता सकते जो अकेलापन होता है घर पर, और ये हैगा हम लोग के वहाँ पुरानियों के लिए बहुत अच्छा हैगा।
0: शीला जी, हम रेडियो बना रहे हैं और रेडियो में तो मैं नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी इसमें मैं थोड़ा से कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, ऐसा कि मेरा जो आजी जिसे दादी कहते हैं, आजी जो एम्स्टर्डम शहर में रहते थे और वो ऐसा बना लिया था, अब देखो हम के जब बचपन रहे जवानी रहे तब कभी काल के कभी सच झूठ चलता है और आजी तो बैल करते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने इतना बार फोन कर कर के मुझे रास्ता पे लाया था कि इतलक वे चित आंदर्श फन आसे का आसपरा खैर दन मुतिक बिहार खान, और ऐसा बना लिया था आप आजी लोगों के कितना क्लाइंट केंद्र है, पर एक क्लाइंट केंद्र मसे हम मेरे लिए कि हर सप्ताह में हफ्ता में सात दिन होता है, और सप्ताह में सात दिन होता पर हफ्ता में सात दिन में से एक दिन हम अपने आजी के साथ जाते थे खाने को, और खाना दनहा खान रहते और यहाँ से लेकर जाते वहाँ पर, वो उनका ऐसा बना लिया था कि ऐसे बनाइए इच जो बनाइए दी कॉम्बिनेशन फन जो खरेख्तों है
1: पहले के हाँ खाना
0: कि हमें भी सीख गए थे खाने, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था पर सीख गए थे खाने को, अब देखिए टमाटर जैसे बनना, टमाटर से आप चोखा बना सकते हैं, आप टमाटर से केचप बना सकते हैं, इसी प्रकार से और जो कड़वा करेला है क्या क्या नहीं बना सकते, किस प्रकार से बनाते थे और क्या कॉम्बिनेशन, कौन ब्रैनो बोने से, कौन उर्दी के दाल से, कौन जाने तो दी कॉम्बिनेशंस एंड एक फिन दैट एक कैप आल्टे दैट हम मिस अपने आजी के, तो दोस्तों सुनने वालों, कहने के तात्पर्य यह है कि हम ये इस कारण रखते हैं कि अगर आपके आजी नानी है अब्बे, क्योंकि एक चीज और रहा शीला जी, हम दो घंटे वहां रहते थे और दो घंटे में आजी इतना बात बताते थे पहले का अब का, दो घंटा लगातार, तो आज नहीं है,
2: आज ही अकेले रहती थी,
0: आज ही अकेले रहती थी। अब देखो यहाँ पर है ना कि ऑनलाइन वार्निंग है एंड तब ऐसा होते थे। और बबली जी कुछ कहना चाहते हैं?
3: नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी जब आस प्राक होता था आजी से, अगर इनके काम चेंज हो जाता, कभी फ्रुकुदीन में जा पाते थे, मेदाख दिन हो जाती, तो नहीं, जब मैंने आजी को फ़ोन करके कहना आजी आज नहीं आ पाएंगे, इनकी काम चेंज हो गया, दोपहर को जाएंगे, तो आजी जैसे एक तरह से मायूस हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा कि इन्होंने आना था और आज नहीं आ पाए, तो कहना हम अगले हफ्ते आएंगे, तो कहना अच्छा बेटी अगले हफ्ते ज़रूर आना, मैंने कहना अच्छा।
0: कहने के तात्पर्य यह है ना कि आजी नानी लोगों दी औदरन दी फरलांगन नारन क्लेन केंद्रन केंद्रन
1: आशा लगाए के बैठे कि हमार लड़कन आए, अच्छा लड़कन ना आए क्लेन केंद्र चल जाए, हाँ। नाती पोता चल जाए, एक दिन जा करके देख लो, चाहे रोज ना जाए पियो सातों दिन, बाकी हफ्ता में एक दिन जो कि पांच छह गो बा, तो उन लोगन बांट करके जाओ, देख लो उन लोग के क्या कमी है, तनी से बैठ के बात कर ले, भोजन कर ले, जैसे आप बताते हो,
0: क्योंकि उन लोग के
1: जो पहले के खाना है जो बनाते थे ना, पहले तो हम जानी सब बनावे बिना खाली लहसुन प्याज से, और ज्यादा उमन कुछ और ना डालत रही, मसाला जो पीस के बनाते थे ना, और ज्यादा कुछ नहीं डाले, जो ईसाई जितना आ गया है सब है ये सब आ गया डालने के लिए, वो नहीं, बाकी उन लोग के हाथ के खाना इतना स्वादिष्ट होते थे, तो वही सीख सीख करके हम लोग कुछ ले के चला चल आईली है कि उसे हम लोग बनाए ला, बाकी जो है बोली ला कि लड़कन जाए के सीख लो बैठो, जो पहले के बात है।
2: शीला जी आप सही कहते हैं, मैं काहे के मैं कहती हूँ, काहे के मैं ये बोली कि आप सही कहते हैं, क्योंकि हम जब अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठती हूँ ना सहेली लोग के साथ, तो वो अक्सर यही बात करते कि मेरे को बहुत पछतावा है, मेरी माँ कहती थी, मेरी आजी कहती थी सीख लो, अगर आज मैं सीख ली होती तो आज बहुत काम निकलता, ऐसे सब कहते हैं। अब पछतावा है, बाद में पछतावा होता है,
1: वो सही बात, वो सही बात। देखो हम अपने की जो बोली ना, मेरे आजी जो थी तो आजी जानते थे कि मैं कंदोरों को बैठी थी ना सूरीनाम में, तो जब कोई जाती थी उनके पास मेरी सबसे सनीसा पठाती थी, मैं जाती थी आजी के पास, बाकी रोज नहीं जा पाती ना, बस सनीसा शीला के बलाई दियो, तो जाए तब आजी का भय, तो आजी धीरे से कनवा में बोले पैसवा कब बटेगा। और खाना जो बनाते थे ना, खाना बना करके भी अगोटे बैठ के अगोटे थे ना, तो हम लोग जाए तो पूछी आजी एक एक कैसे बनाई लो, तो जा आजी बतावे तो मोरी में धर ली, तो घर पर जब जाए तो हम भी उही तरीका से हम भी ट्राई करते, हम ही अपने बना देते,
2: तो उसने
1: वैसे ही बने बने ऐसे सीख गया, बहुत कुछ सीखा है। और जब पुरन के बैठी ला हम लोग, तो कभी कभी हम लोग के भी कोक एक्टिविटी आते रहे ना पकाने के लिए, तो वही पुराना खाना हम पकाए सबके खातिर, तो बहुत ये लोग के इतना खुश हो गए, तो सब पूछे भी कि कहाँ से ये सीखले है, तो देखो भी कि सीख लोगो कुछ आजी आजा से माए बाप से सीख लोगो, तो ओके अपने काम में लाओ कर सकते हैं भी,
0: क्योंकि एक ना एक दिन जब गलती से एक चीज जो जिसमें कुछ ना करने से, वक्त कहते हैं वक्त बगैर कुछ करे आगे बढ़ते जाता है, और एक न एक दिन दांत जब गिरने लगेगा, आंख से कम देखने लगेंगे, और पैरों जो अपने मनमानी करने लगेगा, तो पछतावा ना हो। तो ये तीन बार तीन घंटियां जो जीवन में बचते रहते हैं, तो आपको जो है अपने ग्रोथ ऑर्डर्स कहते हैं ना नई दवाओं में, ग्रोथ ऑर्डर्स ऑर्डर्स के लिए तो खूब मस्त। और कोई कोई कहते हैं कि भाई वह बन दृक लेफ एंड वह बन दृक द केंद्र मुतना द फुटबॉल एंड द ये कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो किंद्र ना द फुटबॉल तो बाद में जब मुसीबत पड़ते हैं बच्चों को पितृ दोष लगते हैं और पितृ दोष ऐसा चीज है जो कितना दिन छोड़ेगा नहीं,
2: कई पीढ़ी तक जाए
0: कहीं कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा तो कहीं कहीं घर में बेटा बेटी और जा करके दूसरा रास्ता पे चल जाता है और ऐसा ऐसा चीज जो पीने लगते हैं ये सब पितर के और सेवा में कुछ ना कुछ पितर ऋण ऋषि ऋण और देव ऋण का और जो बोया हुआ फल है। तो आप समय निकालिए, समय निकाल करके और इन दिनों में और ना इन दिनों में सिर्फ मार्क दैट फॉर योर ऑर्डर्स। शांता जी जो कोई और गीत को रखने वाले हैं हम शीला जी अगर कुछ और कहने वाले हैं
1: जो यही मैं कह सकता हूँ कि देखो माता पिता के इतना प्यार देवो दुलार देवो वही वही सबके कमी है का उनके बात सुनो क्या उन्हों मांगता है तनी थोड़ा के बैठ के सुन ले वो तो उन के भी तसल्ली हो जाते हैं। देखो हम लोग भी हम पुरानियन के साथ काम करती हूँ तो जो उन लोग के तनी से प्यार दे दो दुलार दे दो तो उन लोग इतना खुश हो जाते हैं। उन लोग के खाली पूछ लो कैसे बांटो का भोजन कर लो भोजन कि ना भोजन कर लो कैसे बांटो कैसे आप सो सुत लो बांटो उतने सब हाँ खाली आंदा खाली वही उतने दे दे उनके तो भी ठीक है। जा करके एक बार हफ्ते में देख लो क्या कमी उनके घर में कुछ किन के ले जा करके दे दो उन भोजन पकाते हैं क्या कमी है या तार कर लो ज्यादा हाँ ईसाई तो कितना मोबाइल है जब देखिला सब मोबाइल लेके आवे है ना तो हम लोग सोचे इस सब तो यौगर से आगे निकल गए ले
0: हाँ और ना ओइसन मोबाइल सिला जी स्मार्टफोन भी उनके पास है स्मार्टफोन फेसबुक है और
1: इंस्टाग्राम
0: है
1: सब
0: कुछ है और
1: हमें समय ना लगे हैगा उतना सब ताकि उन लोग के जीवन में अच्छा उन लोग के और ज्यादा समय है ना
0: बिल्कुल
1: बाकी ठीक है कि उतना है उन लोग के भी जो बहुत क्या उनमें जब देखिला कि कैसे सब उनमें अपना वक्त निकालता है भी कुछ है ताक करके कि भगवान के कुछ उम्र होते हैं ना कृष्णा के कुछ होते हैं सभी कुछ ताक के सब अपन जो बहला लेता है।
0: सुंदर सा संदेश और शीला जी जो रखे आज शांता जी छोटा सा म्यूजिक कुछ सुनाने वाले हो आप
2: जी

0: ये सुंदर सा गीत जो शांता जी जो चून करके रखे हुए कि बुढ़ापा किसने देखा है शांता जी।
1: हाँ, और कहते हैं जो भजन कहते कि भजन करो भरी जवानी में, भजन ये नहीं है कि आप माला जाप करो सिर्फ और जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, नहीं, भजन ये है कि सेवा करना, अपने एक दूसरे के सेवा करना, दो बोली बोलना प्रेम से, वो भी एक भजन है।
2: सही बात शांता जी।
1: हाँ, घर में खाना बनाओ पकाओ, वो भी एक भजन के तरीका है।
2: सही बात, खाना बनाओ भजन करते जाओ।
1: हाँ।
2: और वो खाना एक तरह से
1: प्रसाद
2: बन जाता है। और जितना आप भजन करोगे उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा।
1: सही बात। कहते भी कहते हैं कि भजन करो भरी जनवानी में कि बुढ़ापा किसने देखा, कि कान से बहरे हो जाओगे कभी लुंगड़ा हो जाओगे, तो सोचो हाथ कत मा खदान ना ऐसा तरह
0: तो पैसा कमाते रह गए। अब देखा जाए शीला जी, हम औद्र तो है समय जाओ तब बचपन में उन लोगों ने अपन लड़कन के पोस पाल के बड़का कर, इस बोले 10 लड़कन को पोस पाल के बड़का कर देते हैं एक माता पर, एक माता के सेवा करने के लिए 10 लड़कन के लड़कन भी 20-25 हो जावे चाहे पर ना हो पावे। और उसमें वो शक्ति था कि देखा जाए कि हम लोग का कोई त्योहार, शांता जी कुछ कहने वाला था।
1: इसीलिए मेरी ख्याल से वृद्धा आश्रम बना है, क्योंकि बच्चे जो है वो सब आगे देखे पीछे ना मांगे देखे, हमारे माँ बाप भी आगे देखते रहे और आगे देखते देखते, और जो पाछे वाला पीछे रह जाता है, और जो पीछे रह जाता है जो उस जो हेल खुरपन जो है पीछे रह जाए, तो उस सब फर इंसान होए लगे है बस खेन अर्थ वे नेक्स्ट जवेत से ओगने वात से मुत दूर एंड एक डेंक दे डेंक एक या दैट द रीड इज दैट देयर न बयार द हाउस ऑर्डर न हाउस फॉर ऑर्डर से खमा dat ze bij elkaar kunnen komen, hun leed kunnen delen, hun ervaringen van vroeger kunnen delen, met elkaar kunnen praten, communiceren, zodat ze toch het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.
3: Wo sahi ba jo bole hai Santa Didi ji, jo dekho jab un logan isai jo bimari bhi aayi gayi hai, dementia bolte hai na, ki isliye un logan aate hai ya aisen ghar mein guzurbo ghar mein rehne ke liye ki ghar par bacche log seva na kar payega aisen ma baap ke ki kar sake hai ga baki unki special seva chahe कोई के चाहेगा एक बार फिर घर में धरे के और लड़कन ईसाई लड़कन सब कोई काम करे है या तो जब सब कोई काम करे है का, ओके भी घर में छोड़ के जाइए तो अकेले भी दिन भर अकेले रहे, तो इसलिए वो घर जो है बना है सबके लिए कि जा ले जा करके सब भी उमन धर सकते, बाकी धर सकते है काहे खातिर ना, कोई बोले हमें तो शर्म लगे अपने माए बाप के ले जाकर के वहाँ धरा, हम बोली नहीं ये शर्म के बात नहीं है, आप घर पर उनके सेवा नहीं कर पाते हैगा जो दिमाग
0: जो चाहिए
3: से, दिमाग से जो तनी कम हो गया है ना, जो चाहिए उन्हें ही दे पाएगा, बाकी शर्म कब हैगा जो अपने माँ बाप के ले जा करके वहाँ धर दियो इस घर में एक वृक्ष आश्रम में जो हम लोग के हैगा, जब ना जाइए उनके देखे तब तो वो शर्म के बात है, बाकी जो धारे हैगा वो शर्म ना है, वो लोग मजबूरी है।
1: मतलब मैं से दीदार वे कर दिस है
0: प्रोफेशनल्स
1: हैं प्रोफेशनल्स तो वही तो हुसैन मुता आम पाल
3: या और जैसे आपने बोला
1: हाँ
3: जैसे आपने बोला है कि अपने लीफ टाइप खनोत से है अपने अपने जो उम्र के बराबरी हैगा उनके साथ वो बैठ करके बात कर सकते हैगा, वो सही बाजोन बोल है।
1: हाँ।
3: और वो ठीक हैगा घर पर बैठिए बच्चों के साथ भी सब कुछ ना शेयर कर पाएगा, और वहाँ जो है तो अपने सब कुछ आता है मुड़ी में ना बात करने के लिए।
1: हाँ। और बहुत ज्यादा घर पे रहोगे एक बार जो दू दफे तीन दफे हराल करे तब बच्चे बोलेगा चुप रहो मान एक भाव बतिया बोले,
0: अरे शांता जी हिसाब से क्यों ना न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं और कमर्शियल की ओर, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
3: हाँ, तो वैसे रहेगा तो बोलते हैं कि वो उलोक के कैनस नहीं रहेगा,
1: कैनस ना रहा तक
3: का है कैसे पहले हम लोगन ना जाने थी दमयंती का है
0: yeah.
3: अब जब हम लोगन जान के लिए अब तो ढेर प्रचार बा तो जब ऐसे होवे है कोई के तो बच्चन के चाहिए गूगल करके देखे कि क्यों मेरे बाप माता पिता इतना हैर हाल करते क्यों ऐसे बोलता है क्यों तो उन जब देख लेगा ना तो उन लोगन दूसरा व्यवहार दूसरा का व्यवहार करेगा माता पिता से
1: जी तो यहाँ तक था ये प्रोग्राम इस वक्त

0: सुनने वालों, कार्यक्रम जो आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया जाए, तो अनुराधा जी जो भारत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना संदेश रखने वाला है कि जीवन में अकेलापन, जीवन में अकेलापन के अंतर्गत में अनुराधा जी क्या सुनाने वाले हैं, तो हमें अनुराधा जी आपको हम चंदे में ला रहे हैं, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आप अपना संदेश को सुना सकते हैं।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और आपका जीवन स्वस्थ चल रहा होगा, आप अच्छा भोजन खाते होंगे और अपने परिवार जनों के साथ वक्त व्यतीत करते होंगे। देखिए, जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार बनाकर रखें, अपने परिवार वालों से संबंध अच्छे रखें, सबसे प्रेम से और रहें और अच्छे बोल बोलें एक दूसरे से। देखिए, हमारा सभी का जीवन एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारे पास जो जीवन में हमें नहीं पता कितना लंबा हो गया, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जितना भी जीवन हमारे पास हम जीते हैं, हमें होना चाहिए कि हम उसे भरपूर अच्छे तरह खुश होकर बिताएं। संजय जी, आज देखिए, हर इंसान के पास, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग किस्म के हम तरीके से व्यतीत करते हैं। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। भले ही हम सब मनुष्य हैं, पर हम सब अपना जीवन अलग अलग ढंग से बिताते हैं। देखिए, हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग रहने के तौर तरीके होते हैं और परिवार में अलग अलग लोग होते हैं। तो हर इंसान का जीवन हर एक दूसरे से अलग होता है। भले ही हर इंसान का परिवार होता है, उसे जीवन में रहने के लिए पैसे कमाने होते हैं, उसको अपने हर चीज़ करनी होती है, पैसे कमा कर अपना पेट भी भरना है, तो काम भी करना है और परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बच्चे सब होते हैं। पर देखिए, सब परिवार होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक समय आता है कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और या तो उनकी शादी हो गई है या वो कहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग रह रहे हैं या साथ भी रह रहे हैं, आप अपने हम सफ़र के साथ जीवन बिता रहे हैं या कभी कभी हमारा हम सफ़र जो होता है वो हमें बीच राह में अकेले भी छोड़ कर चल जाते हैं, तो हम अकेले रह जाते हैं। हमारे माता पिता जब तक साथ होते हैं तो है, नहीं तो हम अकेले भी अपना जीवन हमें व्यतीत करना पड़ता है। बच्चे भी हमें एक समय पर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि हम बहुत बार हमें एक अकेलापन सा लगने लगता है कि जीवन में हम बड़ा एक अकेलापन ऐसे लगता है कि हम जीवन में इस आए हैं, हम चाहते हैं हमको सब प्यार करें, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर इंसान को अकेलापन लगता है। ये जो आज मैं ऐसी इस पर बात करना चाहूँगी, इस विषय पर, क्योंकि ये विषय जो ऐसा है, हर इंसान कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है अपने जीवन में और वो ये बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी हम आपस में एक दूसरे से लोगों से बात भी नहीं करते हैं, भले ही आप अपने दोस्तों के साथ हो, पर आप हर से हंसी खुशी बात कर रहे हैं, पर जब आप घर वापस आते हैं तो आपको एक अकेलापन महसूस होता है। और ये बहुत बार ये इंसान, हम लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे से ये बात नहीं करते और अंदर ही अंदर इसको हम अंदर महसूस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर काफ़ी चर्चा, मतलब जो चर्चित ये विषय इसलिए है क्योंकि ये आजकल का आजकल हर इंसान इससे जूझ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। और संजय जी, आगे बढ़ते हैं तो एक गीत हो जाए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगी।
0: जरूर जरूर अनुराधा जी, एक गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। नहीं शांता जी, क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा से चला देते, क्योंकि संदेश ज्यादा है
2: जी।
0: हाँ, समय के कमताई और काम के दबाव, तो थोड़ा से गीत को यानी इंस्ट्रूमेंटल चला देते हैं अनुराधा जी।

तो आगे बात लेकर चलते हैं आगे। हम यहाँ अकेले हैं, कभी कभी जीवन के किसी शांत क्षण में जब चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, तब भीतर से हमें कई बार एक धीमी सी आवाज हमारे अंदर उठती है और वो कहती है हम यहाँ अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन लोगों के ना होने से नहीं आता, ये नहीं है कि हमें अकेलापन तभी होता है जब हम अकेले हैं। कई बार घर में घर भरा होता है परिवारजनों से, घर में बच्चे हैं, आपका आपके परिवार में आपकी पति पत्नी आप दोनों में से जो भी हो हैं मौजूद हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते मौजूद होते हैं, हाँ। पर कितना भी कुछ हो जाता है, कितने लोग हैं घर में, तब भी आपको आप कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो और मेरे को अकेलापन सा लगता है। कई बार आपको

अपने जीवन में बहुत खुश हो सकते हैं और पूरा पूर्ण महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अकेलापन वो है जब आप लोगों से भरपूर हैं, आपके आसपास लोग हैं, तब भी आपके मन में जो विचार होता है या आपको जो आपकी जो जो आपको फील होता है, जो आपके मन में चल रहा होता है कि मुझे एक अकेलापन सा महसूस होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको फोन पर संदेश भी आते रहते हैं, ये नहीं कि लोग आपसे संपर्क नहीं करते, लोग आपको आपसे बातें भी करते हैं, फोन मिलाते हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं और लोग से लोग आपके हालचाल भी पूछते रहते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में एक खाली जगह बनी रहती है, एक ऐसी जगह जहां हमारी जैसे कहते हैं ना अनकही बातें, हमारे डर, हमारी थकान, हमारी पीड़ा चुपचाप बैठी रहती है। तो वो ऐसी जगह होती है जैसे जो वो हमारे अंदर ही दिल के अंदर रहती है, हम किसी को दिखाते नहीं हैं, ना ही हम उसके बारे में किसी से हम बात करते हैं, और वो ऐसी पीड़ा होती है अंदर इंसान के कि वो उससे बस उसको अजीब सा वह महसूस करता है, जो जो इससे जूझ रहा होता है उसी को पता है कि वो उसको वो अकेलापन लग रहा है। तो ये एक बहुत जो कहते हैं ना, ये जो परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं, हो सकता है कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति है जिससे आपको यह लगता है कि भाई दुख के आप दुख आप कोई पीड़ा हो रखी, आपको दुख से आपको गुजरना पड़ा हो, तो इंसान को थोड़ा सा अकेलापन लगता है। पर हम ये जो अकेलेपन की बात कर रहे हैं वो ऐसा अकेलापन है जब आपके आसपास सब परिवार वाले भी होते हैं, आपके दोस्त जन भी हैं, आप दफ्तर भी जा रहे हैं, या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको एक अंदर सा खोखलापन आपके अंदर महसूस होता है, और एक आपको लगता है कि जैसे जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं पर ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है, हम वहां हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम बहुत बार दुख महसूस करते हैं। और ये जो परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, ये हम कभी कभी हम किसी से बात भी नहीं करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हम ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो ये बहुत एक गहरी समस्या है जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि हम उस समस्या को हम उसका समाधान ढूंढें, उसके बारे में हम बातचीत करें, चर्चा करें कि ये अकेलापन क्या है। और क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान को हम देखिए, हम हर इंसान का जीवन अलग होता है, पर हमें ये अकेलापन जो है वो हमें ऐसे में परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए जिसमें हम इसमें हम फंस कर रह जाएं, क्योंकि ये बड़ा दुख पहुंचाने वाली परिस्थिति होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें और अच्छा महसूस करें। तो ये आगे मैं बात करती हूँ इसके बारे में, संजय जी एक गीत हो जाए अच्छा सा, जिससे कि जिनको ये अकेलेपन के से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा पल भर की खुशी मिल जाए।

0: चलिए आगे एक गीत हो जाए फिर आगे बात करते हैं।
1: तो दोस्तों सुनने वालों, हम इंस्ट्रूमेंटल की ओर बढ़ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटल जो हम चलाने वाले हैं, क्योंकि

0: तो अभी हम सब सुने जो अनुराधा जी अभी और भी संदेश रखने वाले हैं, पर शीला जी इस पे अब देखा जाए कि हमारे औद्र के लिए काफ़ी चीज़ें जो बन चुके हैं ना, अपंग ढेर सारे हैं जो यानी कि जब मन करे तो रोज ही जा सकता है कहीं ना कहीं।
1: वो सही बात, इसलिए यहाँ पर जो है इसे थोलन में इसे बहुत कुछ खोल गया है ना कि जहाँ जा करके हम लोग के बुजुर्गों लोग पुरानिये जा करके अपना दिन बिता सकते हैं। जैसे कि या जैसे ब्यूर्थ हाउस पहले रहा ना, पहले ब्यूर्थ हाउस अब वहाँ पर बन गया कि सत्संग होवे लगल बा कि पुरानियन आवे वहाँ बैठे, योगा है जाने के लिए, बहुत कुछ तरीका है कि जा करके अपना दिन सब बिता सकते हैं। और इनमें बच्चों के भी चाहिएगा वो लोग के सपोर्ट करे के कि माता पिता लोग निकसे घर से तनी से ले जा करके वो लोगन पहुँचा देवे, माता पिता के ले लेवे। इसे तो टैक्सी कितना यहाँ पर कितना सहारा हो गया टैक्सी के ना कि अपना ले सकते हैं, वो ला करके घर पर तो के है ले करके ले जाएगा, जहाँ तो के काम हैगा वहाँ उतारेगा, वहाँ से उतार करके ला कर फिर घर पर पहुँचा देता है। कि इनमें यही मेरा संदेश है कि निकलो माता पिताओ, जाओ बाहर, बाहर देखो कि अपना दिन बिताओ, अपना लोगन अपना वक्त जो हैगा ना, वक्त हम लोग के जैसे पंडित जी बोलते हैं कि वक्त नहीं अगोरता है, वो सही हैगा कि हम लोग जा करके अपना टाइम वहाँ पर कुछ ना कुछ से जोड़ा रहेगा। और भी कि हम लोगन जब जितने बहरे निकलियो उतना जो बहलीगा आप लोग के अकेलापन जो महसूस करता है घर पर। अब हम लोग के अनुराधा जी कितना बताया कितना अच्छी से जो अकेलापन है ना, अकेलापन बहुत कठिन है, इसलिए कि दर दर पर जरूर कुछ ना कुछ हो गया समय बिताने के लिए कि अकेलापन तनी से दूर होवे कि महसूस ना होवे कि आप अकेलो बाटो।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, और जिस प्रकार से शीला जी कहते हैं और अनुराधा जी जो दूसरा साइड एकदम भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो अनुराधा जी और भी संदेश हम लोग के लिए रखने वाले हैं, आप अपना संदेश को रख सकते हैं।
2: और समझा जाए कि ऐसे अकेलेपन में ये क्या अकेलापन क्या है, ये अकेलापन किसको है? देखिए जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, किसी के लिए माता पिता बनते हैं, किसी के लिए जीवन साथी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए सहारा। तो हम सबकी जो हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, तो हर इंसान की जैसे कहते हैं ना कि हर जीवन में उसके अलग अलग परिस्थितियां हैं और उसके अलग अलग रिश्ते हैं जो सबके साथ उसको निभाना पड़ता है। हम सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हम सभी रखते हैं और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सहारा बने, हमने दूसरों की लिए हम वहाँ थे, जब हमारे माता पिता थे हम उनके अगर बच्चे थे तो हमने उनको जरूरत पड़ी हमने उनको सहारा दिया, हमारे बच्चे थे अगर हम उनके माँ बाप हैं तो हमने बच्चों को जब उनको कुछ सहारे की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी, उनके सहारा जब या हम किसी के पति हैं या पत्नी हैं एक दूसरे की हमने जब करा। तो हर जगह जब जिसकी जैसी आवश्यकता थी वहाँ हम ने दूसरे को सहारा दिया, चाहे भले ही वो दोस्त है घर में किसी को भी, तो हमने हमेशा सहारा तो बने, पर कहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है, तब हमारे पास केवल हमारी खामोशी रह जाती है। तो ऐसे भी ऐसा भी होता है कि जब हम हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हमने जीवन भर दूसरों के लिए करा, आज ऐसा समय आ गया कि हमें खुद किसी के सहारे की जरूरत है, तो ऐसे में जब ऐसा एहसास होता है तब हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हम वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी को कि भाई आज ऐसा भी दिन आ गया है कि आज हमारे मन में ऐसा भी संदेह है, ऐसा भी हमारा मन में चल रहा है विचार कि आज मुझे एक अकेलापन लग रहा है, मेरे को एक सहारे की जरूरत है। और ये बड़ा पर ये ऐसा नहीं कि ये आप ही एक हैं जिसके साथ है, ये अनेकों के साथ ऐसी स्थिति आती है। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको ये लगता है ये होगी? नहीं, ये नहीं है। हर इंसान को लगता है कि भाई अगर हमारे पास खाने को अच्छा है, हमारे पास कपड़े अच्छे पहनने को हैं और हमारे पास मकान है, तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, और ये बस हम बहुत खुश हैं। पर ये हम गलत सोचते हैं। उसकी तो ये नहीं कि हमें खाली रोटी, कपड़ा, मकान ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता। उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या होती है? समझा जाना, जहाँ लोग हमें समझें, कोई दूसरा इंसान हमें समझे। ये जो बाहरी चीज होती है ना, खाना पीना और घर होना, पर सब कुछ है, कपड़ा सब है, आपका जीवन बड़ा, आपका बहुत अच्छा, आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर ये कोई ये नहीं समझता कि इस सब का कोई अर्थ नहीं है अगर आपको कोई समझने वाला ना हो। तो सबसे बड़ी आवश्यकता हर मनुष्य की है कोई उसको समझने वाला हो। तो ये हर इंसान की सबसे बड़ी जो आवश्यकता, उसी को कहते हैं कि कोई उसको समझ सके, उसकी दिल की गहराइयों को समझ सके, उसकी दिल की बात को समझ सके। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके। तो ऐसी ही इंसान को हम तलाशते रहते हैं और हमें हमेशा लगता है कि भाई ऐसा ना हमारे साथ, जब जो हमें नहीं समझ पाता तब हम अकेलापन का हमें एहसास होने लगता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि आप कितने भी धनी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो कोई जरूरी नहीं आप बहुत खुश हैं। उस इंसान को भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और भले ही एक इंसान गरीब हो, हम सोचें भाई गरीब है, उसको अपने दुख है, पर इसमें गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अकेलेपन का एहसास उसको वो कभी कभी कभी ना कभी जीवन में उसको वो इससे गुजर सकता है। तो संजय जी, आगे बात बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस विषय पर, क्यों ना एक और सुंदर सा आप अपने पिटारे से एक और गीत सुनाएं हमें।
0: अनुराधा जी, मैं तो पिटारा वाला तो शांता जी है, और शांता जी पिटारा में भर के लाए हैं ढेर सारे गीतों, पर कहने के तात्पर्य ये है हमारा कार्यक्रम थोड़ा लंबे है तो, और पनीर के पीछे बैठ गए हैं शीला जी, तो शीला जी क्या म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल्स थोड़ा से चला देते हैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके, कोई ऐसा जो वह यह ना पूछे कि तुम्हारी क्या समस्या है, बल्कि केवल इतना उससे प्यार से ये कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, यही जो साथ है ना, इसी साथ हर इंसान यही साथ चाहता है एक साथी से, या जो भी उसके परिवार में है जो उसको समझ सके और उसे कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में सबसे गहरा दुख अक्सर वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सबसे गहरा दुख वह होता है जिससे होता है जो दिखाई देता है। मतलब हम सोचते ना कि भाई किसी को कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ है, तभी उसको दुख है। नहीं, वो दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना जो अंदरूनी, जो उसके अंदर जो दुख होता है वो सबसे बड़ी, वो दुख होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, तो वही इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। और यही जो दुख होता है ना, जिसको हम अकेलापन करते हैं, यही वो जो अकेलापन की स्थिति होती है, उसी में वो सबसे इंसान दुख से पीड़ित होता है, अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा इंसान का जो होता है ना, वो दुख होता है, और वो अकेले ही उसको उसको झेल रहा होता है, कि उसको ये नहीं पता कि भाई उसको बस एक इंसान की जरूरत है जो उसको समझ सके। और वह क्या होता है कि ऐसी जो बात होती है ना, हम किसी से कह नहीं पाते हैं बहुत बार, वह दर्द जो आंखों तक आकर लौट जाता है, वह आंसू जो किसी के सामने बह नहीं पाते, वह उम्मीद जो धीरे धीरे टूटती रहती है लेकिन जिसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। शायद इसी कारण हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। तो यही जो जो सबसे बड़ा जो इंसान का जो अकेलापन आता है ना, वो इसी से आता है, वो कभी जो वो बोल नहीं सकता किसी से। तो ये बहुत बड़ा हर इंसान के जीवन में आता है कहीं ना कभी, कभी ना कभी। हम अपने संघर्षों के साथ अकेले हैं, अपनी यादों के साथ अकेले हैं, अपने डर और अपने सपनों के साथ भी अकेले हैं। देखिए, इस सत का एक दूसरा पक्ष भी है। तो जहां पर हम सोचते हैं कि भाई हम अकेले हैं हर चीज में, पर एक अलग भी उसका जब है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें आसपास, चाहे हमारे परिवार वाले हो, हमारे दोस्त जन हो, हमारे सहकर्मी, हमारे जहां आप काम करते हो, दुनिया में हर कोई, कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई बोझ लिए चल रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा दुख है। देखिए, कोई ऐसी कमी है जिसे वह शब्द नहीं दे पाता है। तो तब समझ में आता है कि हमारा अकेलापन केवल हमारा नहीं है, यह मनुष्य होने की साझा नियति है। ये हर मनुष्य को कभी ना कभी ये इस दुविधा से, इस परिस्थिति से से गुजरना पड़ता है। तो चलें आगे और भी हम बात करेंगे, और आशा करते हैं कि देखिए अकेलापन है, पर इससे हम उभर कर क्या हम निकल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बस हम अकेले, अगर हमें ये महसूस होता अकेलापन है, क्या हम जीवन भर ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा? क्या आगे कोई इसमें कोई हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें इससे निकल सकते हैं?
चलिए पता लगाएंगे आगे, उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा एक और गीत हो जाए। संजय जी आइए एक गीत सुना जाए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं।

0: अकेलेपन के बारे में, तो देखिए हम यही बात कर रहे थे कि हम हर इंसान एक साथी की खोज में है जो उसको उसको लगे कि जो उसे समझ सके। हम सब अपने अपने दुखों के साथ चलते हुए एक दूसरे की तलाश में हैं। हम सब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं होते हैं जो हमारे भीतर तक पहुंच सके। और देखिए जीवन भी ना शायद इसी खोज का नाम है। जीवन भर हमारा बीत जाता है और ये हमारा नजरिया भी होता है बहुत बार कि कभी कभी जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं वो हमारे सामने है पर हम उसको इतना उसका हम उसका महत्व नहीं समझते हैं, उस इंसान के बारे उसके बारे में या उस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं। और हम ऐसी ही कुछ अपना तलाश कर रहे होते हैं या किसी की चीज खोज रहे होते हैं जिससे कि बस हमारा अकेलापन दूर हो जाए। किसी ऐसे हाथ की खोज में हम होते हैं जो कठिन समय में हमारा हाथ थाम ले, तो हमें ये लगता है कि भाई हम ऐसा हमें भाई कोई समझने वाला हो या हमारा हाथ थाम ले ऐसी ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा जीवन में अकेलापन जो हम हमें हम जिससे गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाए। किसी ऐसी आवाज की खोज में होते हैं जो टूटते हुए मन को यह विश्वास दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा। तो हर इंसान हर मनुष्य का हृदय क्या होता है ना, वो चाहता है प्यार, चाहता है प्रेम, चाहता है। तो किसी हम ऐसे एहसास की खोज में लगे रहते हैं जहां हमें अपने आंसू छिपाने ना पड़े। जिस इंसान के साथ हम ऐसा लगता है कि जहां हमें अपना पंसा लगे, हमें किसी के साथ ऐसा अपनापन लगे कि हम अपने दुख की बात हम अपना सब कुछ इस इंसान के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ हम बांट सके। और जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा अकेलापन भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हर मनुष्य जो है ना वो बहुत बार देखिए ऐसी जीवन में आप जब आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आपकी जीवन शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी कट रही हो सकती है, आप खुश होते हैं तब आपको ऐसा साथी मिला है जहाँ जो आपको समझता है। पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के साथ हैं पर वो हमें समझ नहीं सकता है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है। पर कभी कभी ये भी हमें सोचना चाहिए क्या आपको लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, पर क्या वो देखिए वही बात दूसरा आपका जो साथी है उसको भी ये लग सकता है कि ये इंसान हमसे दूर रहता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके जीवन में आपका साथी हो आप उसको भी समझने की कोशिश करें। और जहां आप अपना हाथ बढ़ाएंगे दूसरे को समझने में तो दूसरा इंसान भी अपना हाथ आपको समझने में की कोशिश में करेगा। और ऐसे ही ये बहुत बार होता है कि हम अपनी जो मानसिक रूप से हम जब ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारा कोई हमारा दुख रुख सुख नहीं समझता है, तो हम वो अकेलापन की हमें अनुभूति होने लगती है। पर आप इसी देखिए हर चीज़ ये तो हमारे दिमाग से होती है, इसी दिमाग को अगर हम ये कहें आप अगर नकारात्मक ना सोचें और उस सोच को हम बदल कर सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग करें कि जो हमारे साथ परिवार जने हैं हम उनसे थोड़ा खुलकर बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपने बच्चों के साथ हम अपना थोड़ा समय दें, अपने माता पिता हैं आपके, आपके जो जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो दोस्त हैं आपके, हो सकता है आप अकेले रहें, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अकेला जीवन व्यतीत करने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, अकेलापन का महसूस करें, आप लोगों से दोस्ती करें, अपने अपने जैसे लोगों से जो आपको लगता है जो आपकी बात समझ सकते हैं, जो आपको आप जो आपके दुखों के दुख के समय आपको सहारा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप मिले जुले हैं, आपस में परिवार में भाई बहन हो, रिश्तेदार हैं, उन सब से एक एक अच्छा सा एक
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: तो देखा जाए आपको हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं, और ये कौन सा गीत है, मूवी का नाम है, यानी कि एक मस्त भरी गीत है, अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में।

और तेरी मेरी बीच में कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का ये मूवी एल्बम है का, नचिकेता लता जी का ये सॉन्ग है एक और हो जाए।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तो उसका मजा आपको और मिलेगा। कयांगनी कुमार चानू।

और देखा है क्या देखा है क्या देखा है, साजन के प्यार देखा है और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नैतिकेल लता जी पर माशी मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए तेरे नीले नीले आंखों की।

दोस्तों जोंग जोंग जोंग मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है 1969 रंगत तेरी सूरज से इस An romantic duet song by the golden voice of Nightingale, Lata Mangeshkar, and Padma Shri Mohammad Rafi White, Hasra Jaipur. Song the hits. Uske baad hum chalte hain movie ka naam hai Waqt 1965 ka ek super hit song hai jo Padma Shri Rafi ji ka yani ki Rafi ji ka song hai aur suna jaye.

और ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है, और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है। और उसके बाद हम चलते हैं, आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहाँ आए किस लिए। और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है, हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों, किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है कल आज और कल, 97 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओ

0: ज्यादा है
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है
1: क्या?
0: शादी का इरादा है
1: शादी
0: का इरादा है
1: शादी ना बना
0: मगर क्यों
1: शादी तो बर्बादी है
0: क्या कहती हो
1: शादी आजादी है
0: नहीं नहीं सुनो तो बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप मुस्कुराइए
2: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों। और ये गीत एक बेमिसाल गीत किशोर दादा आशा जी का। और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है वो क्या है आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है क्यों छा जाती है जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

ये भी रफीसा है बवाशा जी कारवां में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

अच्छा जी, आपको सुनाए ओपी नायर के साज पर फिल्म हम साया में से निकाले हैं ये शानदार गीत। चलिए, ये गीत बहुत दिन हुए शायद आप भी नहीं सुने होंगे, एक दूजे के लिए।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आप सुना रहे थे कार्यक्रम में ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, आपने किशोर कुमार जी के वर्जन यानी किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बहुत बार सुने हैं। चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में, जो हम कम चलता है। तो लीजिए लता जी, फिल्म महबूबा में से।

फिर भी मेरा मन प्यासा, लता जी की आवाज़ में फिल्म महबूबा में से निकाले हैं, आर डी बर्मन के साथ पर हमने पेश किए। VVV.FM.NL पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है मैं आपको सुनाऊँ ये गीत, मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। हाँ, फिल्म पतंगा में से, सॉरी कटी पतंग में से निकाल

इस गली में तेरा घर न हो बालमा, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो भी एक धमाका दिए धमाकेदार गीत है।

जोगी ओ जोगी प्यार में क्या होगी। ये गीत आपको सुनाया गया, फिल्म है लाखों में एक, और लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में पेश हुआ फिल्म गैम्बलर में से निकाल कर निकली सैफ तक का ये गीत एस देव बर्मन के साज पर हम आपको सुनाएंगे।

की चाहत ना होती एवरग्रीन। किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आरती बर्मन के साथ पर, ये टाइटल सॉन्ग नेकी द्रियन तख्त का अगर तुम ना होते फिल्म का नाम है। चलिए आप तत्पर हैं, आप जहाँ भी होंगे ये जो भी कर रहे होंगे आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं जी हाँ मैथी मुकेश इस तरह से फिल्म छाया में से निकाले हैं निगति 1961 का ये गीत।

मैं तो मुकेश और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म छाया में से निकाल कर सलील चौधरी के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं वह है रफ़ी साहब की, और रफ़ी साहब का ये गीत फिल्म साजन की सहेली में से, फिल्म साजन की सहेली में से निकाले हैं उषा खन्ना के साज पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं, चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा गीत।

बूंद दे सभी सितारे, ये प्यारा गीत सुनाया गया आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। फिल्म साजन की सहेली में से निकाल कर हमने पेश किए उषा खन्ना के साज पर। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी एक बार फिर।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस दोनों मिलके सुनाए हैं ये द्वैत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपका हृदय से स्वागत है, आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। आशा जी और रफी

क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। रफ़ी साहब आशा जी आपको सुनाए कुर्बानी में से निकाले हैं, इंडिवर के लिखी हुई गीत, कल्याण जी आनंद जी के साज पर चला ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको आशा जी और भूपेंद्र की, जी हाँ, बप्पी लहरी के साज पर ये है।

वो प्यार के लिए जिससे हमने छोड़ दी है दुनिया, भूपेंद्र और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं फिल्म बंदिश। फिल्म बंदिश में से निकाले हैं 1980 का ये गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

फिल्म हंसते जख्म में हम आपको सुनाए हैं रफी साहब और लता जी की आवाज में मदन मोहन के साज पर।

कितना प्यारा वादा है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में पेश हुआ ये शानदार गीत फिल्म कारवां में से निकाल कर।

लता जी आपको सुनाए अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयाँ में से है नेगिन फिर से शस्तका जी यानी कि फिर शस्तका ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, एक फिल्म है, फिल्म शायद आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, ये गीत है गाया गया है गीता रॉय जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, स्वार्थवेद फिल्म है, शायद आपने देखे होंगे, नाम है जग्गा डाकू, जिसमें जयराज ने खेले हैं, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है, एक्ट्रेस नाम नहीं है, क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेत 1962 का ये गीत लता जी की आवाज में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर। ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह क्या दिव्य था रफी साहब और आशा जी की आवाज में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, हमने कहा ना मैं कुं कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।